0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

रेडियो प्रसानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। बात करते हैं गुड हैबिट्स की, यानी अच्छी आदतों की। हाँ, और जब अच्छी आदतों की बात आती है तो आप कहते हैं सताक्षी, ये बच्चों वाली चीजें तुम हमें क्यों बता रही हो, मतलब अच्छी आदतें तो हम बच्चों को सिखाते हैं, भला हम क्यों सीखें। तो देखिए जनाब, आप भी बच्चों से कम नहीं है, क्योंकि सारी बुरी आदतें तो आप में ही है। टाइम पर ना उठना, ढेर सारी चाय और कॉफी पीना, एक्सरसाइज ना करना, देर तक सोते रहना, कुछ भी अनशन खा लेना, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी बैड हैबिट्स ही कहलाती हैं, बुरी आदतें। और बहुत जरूरी है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, एक बढ़िया जिंदगी चाहते हैं, तो अच्छी आदतों को डालें। हाँ, तो मैंने आपकी सारी बुरी आदतें तो गिनवा दी, अब अच्छी आदतें क्या होती हैं आपको बेटर पता है, तो चलिए अच्छी आदतों के नाम ये अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस सताक्षी के साथ।

बात करते हैं एक बढ़िया से हार्मोन की जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है, और इस हार्मोन का नाम है एंड्रोफिन। जी हाँ, एंड्रोफिन जब एक्टिव हो जाता है तो इसका काम ही है कि आपके तनाव को यानी कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है और आपके मूड को एक्टिव कर देता है। और इसे एक्टिव करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा खुद पर फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि आप पुशअप कर सकते हैं, है ना, मेडिटेट कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे तो भी आपका एंड्रोफिन एक्टिव हो जाता है। सुबह उठते ही अगर आप हाइड्रेट हो जाएं तो भी आप एक अच्छे मूड को जो है वो अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे और आप दूसरों को भी बेहतर महसूस करवाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हमारा मूड अच्छा तो सबका अच्छा, और जब हमारा खराब तो सबका खराब, है ना। तो वो वाली स्टेज ना आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एंड्रोफिन जो है वो खुद की बॉडी में रिलीज करें, उसे एक्टिव करें, ताकि हम स्ट्रेस फ्री हो सके। और इसी बात पर अभी हम सुनते हैं एक और ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे। Listening to Radio Brisbane 1701 AM, आप सुन रहे हैं It Happens, आपके साथ है सताक्षी।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

इटहैपेंस एंजॉय करें आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। आपके इटहैपेंस में इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं आपकी जिंदगी की कुछ खास और बेहतरीन बातें। जहाँ देखा जाए तो हमारी जिंदगी के लिए हमारे पास सबसे कम वक्त होता है, और वक्त किसके लिए होता है? हमारे करियर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, है ना। लेकिन उसमें भी हम अक्सर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, यानी कि कुछ भी डिसाइड करने की जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, वो सही ना होना। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है, जो थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, फोकस। जी हाँ, जब आपका फोकस कम होगा, आपका फोकस अच्छा नहीं होगा, तो आप डिसीजन मेकिंग में कभी अच्छे नहीं होंगे। डिसीजन मेकिंग वही अच्छी कर सकता है जिसे सबसे पहली बात तो खुद पर भरोसा होता है, और दूसरी बात उसका मूड बढ़िया होता है, वो स्ट्रेस फ्री होता है, वो फोकस कर पाता है अपनी चीजों पे। सो बहुत जरूरी है कि अगर आप लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पर फोकस करना सीखिए। और एक और ट्रैक अभी सुनिए मेरे साथ इसी बात पर। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

हैपन सुन रहे हैं आप मेरे साथ। जी हाँ, रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपन्स, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों कि हम बड़ा सोचने से डरते हैं, मतलब हमें लगता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं हमें उनके अंदर ही सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं आप बड़ा करेंगे कैसे? इसलिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। तो अपने रिसोर्सेज से निकल कर सोचिए, आप उसके बियॉन्ड जो कर सकते हैं उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि यार हम इतने से पैसों में या इतने से रिसोर्सेज में हम क्या ही कर लेंगे। हाँ, बस ये है कि सिर्फ सोच के हमें नहीं बैठना है, फिर हमें वो सब करना है जो हमें इन रिसोर्सेज को जुटाने में हेल्प कर सके, हमें हमारी मंजिल तक लेकर जा सके। और उसी का नाम होता है दिन रात पैशन के साथ मेहनत करना। इतिहास गवाह है कि अब तक जितने लोगों ने इतिहास रचा है ना, वो कहीं भी ऐसा नहीं था कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा हुए थे। उन सब ने मेहनत के दम पर ही इतिहास के गोल्डन लेटर्स में अपना नाम दर्ज कराया है, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज दर्ज है। सो जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, बस आपको अपने रिसोर्सेज के बियॉन्ड सोचने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। एक और ट्रैक इसी बात पर एंजॉय कीजिए सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

You know what, दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत क्रिएटिव होती जा रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव, हर रोज क्रिएटिव कैसे नहीं, मैं अपने घर को कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रही हूँ, उस पर कुछ अच्छा क्रिएशन नहीं दिखा रही हूँ वहाँ पर। एक्चुअली मैं अपने ही लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही हूँ और वो क्रिएशन जो है वो मेरी प्रॉब्लम्स में नजर आने लगा है। सो यस, आई एम सो क्रिएटिव, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। बिना मतलब के पंगे कभी कभी हम लेते हैं ना, बिना मतलब की प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करते रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ध्यान दीजिए थोड़ा अपने आप पे, जहाँ पर बदलने की कोशिश करनी हो थोड़ा सा करिए, उसमें क्रिएटिविटी दिखा दिखा के और स्मार्ट मत बनिए कि एकदम परेशानियों से आप खुद ही अपनी बनाई परेशानियों से घिर जाएं। और ये ज्यादातर परेशानी जो होती है वो दूसरों के बारे में सोच कर, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा दूसरों के लिए करके, दूसरों को ना कहने की चाहत जो नहीं है आप में बिल्कुल भी, कि आप नो नहीं कह सकते, या फिर जो बाउंड्री आपको खुद के लिए सेट करनी है वो आप सेट नहीं करते। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ना करके आप अपने ही लिए नई प्रॉब्लम्स डेली क्रिएट करते हैं। तो क्या करें, अभी उन्हीं प्रॉब्लम्स के नाम फिलहाल गाना सुन लें, आइए इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

सो फ्रेंड्स, ये था आज सताक्षी के साथ आपका एक और बेहतरीन सा साथ इट हैपेंस में। आज एक बार फिर से इस मॉर्निंग जर्नी में आप सताक्षी के साथ थे कुछ बेहतरीन बातों और गानों के साथ। तो मेरी और आपकी बातों का ये सिलसिला, ये सफर आगे भी जारी रहेगा। जी हाँ, कल सुबह फिर से मिल रहे हैं ना हम इसी इट हैपेंस के सफर में हमारे अपने ब्रेकफास्ट शो में। सो चलिए आज के इस सफर से आप इजाजत ले लेते हैं, विदा ले लेते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर से मिलेंगे, क्योंकि आपको भी बहुत सारे काम है और इस दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करनी है। तो मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करते हुए कहूंगी Have a great day and yes, of course, good morning.

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हां तुसी बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 एफएम ते चार छे संदेश ओलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं सिलगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रसानी 101 एफएम साडा फेसबुक पेज है जी, ब्रसानी एट ब्रसानी डॉट कॉम साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे नाल गल्लां बातां करनियां।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ साल खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कान्स वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्हां ने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तो थोनों पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां है। तो अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तो चल मैं तुहानूं दस्सदी हां, जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि ये फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। इन्होंने फिल्मों के जड़िया पूरी दुनिया के छाइया हुई ने तो ये जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस विच सब तो पहला नाम जो आता है वह है बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग है फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश में निकलता। फिल्म मणिपुर जाति तनाव से सीमा दी चुनौतियों एक बच्चे के नजरिए दिखाती हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जाती है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 ते जे आर जे संदेश चौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। अगली फिल्म जिहड़ी हैगी है उसका नाम है जी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपाड़िया की फिल्म हैगी है ते फिल्म 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल विच ग्रैंड पिक्स जीती सीगी। कैन फिल्म फेस्टिवल दे विच कानी कुश्रुति अते दिव्या प्रभा इस विच लीड रोल दे विच है ते मुंबई दिया दो नर्सां दी इमोशनल यात्रा दिखाउंदी है कि है। गोल्डन ग्लोब विच दो नॉमिनेशन बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ते बेस्ट डायरेक्टर ते गोथम अवार्ड्स NYFCCA LA शिकागो आदि तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड जीते ने। बाराक ओबामा ने इस नू 2024 दी टॉप फिल्म चुनिया सीगा।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाले एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिना उससे बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। ओ फिल्म दा नाम हैगा मसान। नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उत्थे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग की थी है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

जीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीथ्स। ये नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है बट नो नो नो नो नो नो हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन नूं बचाउंदे है कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते सनडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते है कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
5: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट विच वो है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्या हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस्सनी आ, वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

जी देखो, वेड़ा तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लैण दा, पर जाण तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी हाँ। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिपलिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी। फिल्म वेनिस फिल्म फैसटिवल विच एफ आई PRESCI अवार्ड मिले हैगा, अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से गए। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर आ करो तुम साढ़े रेडियो बिरसवानी 101 FM साथ फेसबुक पेज है जी बिरसवानी @bersawani.com साथ ईमेल आई डी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। तो बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्रीकाल।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: डिजिसेल, बेटर टुगेदर।
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रणत प्रजित। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।

0: आए असी फुले ना समाए साडे घर ते शरीफ ले आया नू साडे सारे वलों जी
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
3: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
2: ऐसा क्या खास है वहाँ
3: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
2: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर श्रीनिवा के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसा फील कर रहे हो, कैसे हो और क्या हाल चाल है आपके? जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। जी हाँ, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा ऐसे से होता है, हाल चाल पूछ के होता है, मिजाज पूछ के होता है। जी हाँ, तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपको तो पता ही है हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही खास होता है। 3 घंटे का ये सफर कैसे बीत जाता है और कैसे हम इतनी जबरदस्ती गपशप करते हैं, हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, आप अपने फेवरेट गानों को शेयर करते हो, हम आपके लिए बहुत ही मजेदार इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। सो बेसिकली बहुत कुछ होता है इस प्रोग्राम में और वही बनाता है इसे इवनिंग वाइब। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल के साथ, जो कि है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। जी हाँ, जो कि हम हमेशा करते हैं और ये जबरदस्त सा रिचुअल हमें हेल्दी रखता है मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से। सो आइए सबसे पहले वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से गाने के साथ। वो खूबसूरत सा जो गाना है वो एक बहुत ही फेमस मूवी का है और जिस वक्त ये मूवी बनी थी ऐसा कहा जा रहा था कि ये सबसे महंगी मूवीज में से एक है। मतलब उस वक्त इसे बनाने में शाहरुख खान के सारे पैसे लग गए थे और ये मैंने उन्होंने खुद कहा है। जी हाँ, आपको लग ही गया होगा पता कि मैं कौन सी मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट रावण और उसका एक गाना है बहुत ही प्यारा सा, दिलदारा। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में। जी हाँ, मौसम क्या कह रहा है और क्या आपको प्लानिंग वो करने देगा आपके हिसाब की, वही जानने का वक्त हो गया है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 19.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 17.5 डिग्री सेल्सियस के करीब। आपने देखा पिछले दो दिन से ठंडक जो है वो बढ़ गई है। जी हाँ, और वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। जी हाँ, ये तो हुई टेम्परेचर की बात। अब जरा बात करते हैं चांसेस ऑफ रेन, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि होने वाली है, और 50% चांसेस थे बारिश के आज के। और वहीं बारिश जो है मुझे होती हुई नजर आ रही है कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में थोड़ी सी और कुछ इलाकों में नहीं भी होगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 4 बजे के करीब 38% बारिश होती हुई नजर आ रही है, लेकिन 5 बजे के करीब 16% बारिश होती हुई नजर आ रही है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि बारिश कितने परसेंट होगी, इसका मतलब ये होता है कि ब्रिस्बेन में कितने परसेंट इलाकों में बारिश होने वाली है। जी हाँ, सो ये है बारिश का हाल। और अगर आपके वहां बारिश हो रही है तो जरूर मुझे बताइएगा, और पकौड़े रेडी रखिए क्योंकि मैं आ रही हूँ फिर। जी हाँ, इसी के साथ ये तो था मौसम का हाल आज का। एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। वहीं अगर बात की जाए कल की और परसों की यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे की, तो कल मुझे बारिश होती हुई कम नजर आ रही है, 40% चांसेस हैं, लेकिन बादल मुझे दिख रहे हैं विद 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। बट थर्सडे को मुझे 60% चांसेस यहां नजर आ रहे हैं बारिश होने के विद 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये है मौसम का हाल, और मौसम का हाल क्या आपको बताएगा और मौसम का हाल आपका हाल कैसा बना रहा है वो भी हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि क्या पता आपकी कोई प्लानिंग हो बाहर जाने की और मौसम कह रहा हो अरे नहीं नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और क्या पता मौसम वैसा ही चाहिए हो जैसा कि हो आपको अपनी प्लानिंग के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए। सो यू नेवर नो, हर किसी के लिए मौसम जो है वो डिफरेंट है। और यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात हो जाए आपकी फरमाइशों की, यानी कि जो गाने आप पसंद करते हैं उन्हें आप सुन सकते हैं, यानी कि आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को डेडिकेट कर उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर डायल करना है और वो नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर दो डॉगीज, एआई डॉगीज जो है वो बैठे हुए थे और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तो उसमें से एक डॉगी दूसरे डॉगी को बोलता है कि यू नो व्हाट, आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड व्हाई डू आई नीड बर्थ सर्टिफिकेट। तो दूसरा वाला डॉगी उसको बोलता है कि बिकॉज दे नीड प्रूफ दैट यू हैव बीन बोर्न, कि तुम पैदा हुए हो, उनको प्रूफ चाहिए। तो वो दूसरा वाला डॉगी फिर से बेचारा कंफ्यूजन में बोलता है कि आई प्रॉमिस आई वॉज बॉर्न, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं पैदा हुआ हूं। तो दूसरा वाला डॉगी बोलता है कि बट दे स्टिल नीड प्रूफ एंड दैट्स व्हाई वी नीड बर्थ सर्टिफिकेट। तो वो फिर से बोलता है कि यू नो व्हाट, आई प्रॉमिस मैं पैदा हुआ हूं, मतलब ऑफकोर्स मैं पैदा हुआ हूं, तभी मैं यहां पर हूं, मतलब आपको क्या लग रहा है मैं डाउनलोड किया गया हूं। And I was like, जब मैं ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर देख रही थी, सुन रही थी, I was like, वाह, मतलब बात में दम है, मतलब हम पैदा हुए हैं, so of course हमारा जन्म तो हुआ ही है, so उसके लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, मतलब हम तो पैदा हुए ही हैं, राइट। ऑफ कोर्स इट्स अ थोड़ा आइडेंटिटी वाली सिचुएशन के लिए उसको लिया जाता है, बट द थिंग इज कि अगर आप किसी नॉर्मल लॉजिक से सोचें तो आप भी समझ नहीं पाएंगे कि एक इंसान जो पैदा हुआ है उसको ये प्रूफ करने के लिए कि वो पैदा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। वाह भाई वाह, ये तो बात ही नहीं बनी। आई वाज लाइक, या आई नीड टू आस्क माई लिसनर्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, और गेस कीजिए ये फरमाइश आई कब है हमें। जी हाँ, मतलब अभी तो प्रोग्राम शुरू ही हुआ है, लेकिन ये फरमाइश हमें पिछले कल ही मिल गई थी कि निव्या जी, कल के प्रोग्राम में अगर आप हमारे लिए ये गाना प्ले कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। एंड आई वाज लाइक या ऑफ कोर्स। जब मैंने ये देखा, आई वाज लाइक देखिए कितने प्यारे प्यारे लिसनर है मेरे। जी हाँ, सो ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की तरफ से। गाने का नाम है तेरी मिट्टी और ये केसरी मूवी का गाना है। सो मूवी बहुत सुंदर है, बहुत ही खास है, गाना भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपने नहीं सुना है तो अब सुनिए, बिकॉज You are gonna be a fan. अगर आप इसे सुनते हो, आप इसको सुनने के बाद इसके फैन बन जाओगे। सो थैंक यू सो मच पूजा जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए। लाइक आई मीन इट। एंड ये रहा आपका गाना, बिना देर किए सुनते हैं इसको। और आप सब मेरे बाकी के लिसनर्स, जल्दी से आप भी अपनी फरमाइशें भेज दीजिए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। दोस्तों इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ था और आपको पता है, वेल ऑफ कोर्स दिन पहले हुआ था लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी रात ही थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग थी, तो ऑफकोर्स हम उसको नहीं देख पाए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि आइसलैंड, जैसे कि स्पेन, जैसे कि ब्रिटेन, बहुत सारी कंट्रीज से इस टोटल सोलर इक्लिप्स को देखा गया और इस नजारे को रिकॉर्ड किया गया, कैप्चर किया गया। और जिन कंट्रीज ने इसे रियल में नहीं देखा उन्होंने इसे डिजिटल वर्जन में देख लिया। लेकिन लेकिन लेकिन एक चीज जो इस टोटल सोलर इक्लिप्स के बाद हुई वो ये थी कि बहुत सारे लोगों ने हॉस्पिटल जाकर एक चीज कही अपने डॉक्टर से, खासकर आई स्पेशलिस्ट से, कि वो अब अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं या फिर उनकी आंखों में दर्द हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जब भी कोई टोटल सोलर इक्लिप्स या किसी भी टाइप के इक्लिप्स को देखा जाता है उसके लिए इक्लिप्स ग्लासेस पहने जाते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आप उन्हें नेकेड आईज से देख सकते हो और फिर भी कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है कोई कुछ ना हो लेकिन देयर आर चांसेस कि कुछ हो। जी हाँ, अगर आप इसे नॉर्मल शेड्स यानी कि नॉर्मल ग्लासेस से देखना चाहते हो तो आपको लगता है कि ओह आपने तो अपनी आंखों को बचा लिया है, फिर भी चांसेस हैं कि आपकी आंखों को कुछ हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी तो कुछ हो सकता है, तो क्या किया जाना चाहिए जिससे कि अच्छे से उस इक्लिप्स का मजा लिया जा सके और साथ में अपनी आंखों को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। वेल, उसके लिए होते हैं इक्लिप्स ग्लासेस, जिसको पहनकर ही अपेरेंटली इक्लिप्स को देखना चाहिए। और यहां पर आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, सबसे पहले तो तुम हमें ये बताओ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। वेल, लॉजिक कुछ ऐसा है कि जब भी इक्लिप्स आता है तो बहुत सारा पार्ट जो है वो, खासकर सोलर जो है यानी कि सूरज का जो है वो ढक जाता है। मतलब एग्जांपल हम यही ले रहे हैं जो लास्ट और लेटेस्ट सोलर इक्लिप्स हुआ है। अब चांद ने सूरज को ढक लिया, पूरी तरह से ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी उसके आजू बाजू से जो रोशनी निकल रही थी वो इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से निकल रही थी कि वो चीज अफेक्ट कर सकती है। अब आप खुद देखिए कि बहुत सारे पार्ट में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जो आजू बाजू वाले पार्ट से दिख रहा है आपको, सूरज की किरणें जो आ रही हैं वो ज्यादा भयानक हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन लोगों को कहा जाता है कि अगर आप देख रहे हो कोई भी इक्लिप्स तो आपको इक्लिप्स ग्लासेस को पहनकर ही देखना चाहिए। अब यू नो व्हाट, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन होती रही है इसके बारे में। लोग कहते हैं अरे हमने तो इसे नेकेड आई से देख लिया, हम तो एकदम सही है। दूसरे भी कहते हैं हम तो एकदम सही है, बट देर आर मेनी पीपल। एंड गेस व्हाट, गूगल पे जो है वो सर्चेस आईज हर्ट्स आफ्टर इक्लिप्स जो है, ये सर्च जो है वो बढ़ गया है, मतलब 500% जो है वो बढ़ गया है गूगल में। या ये गूगल ने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं आफ्टर द टोटल सोलर इक्लिप्स। सो या जैसे कि कहा जाता है कि नेचर के साथ पंगा नहीं लेते। अब आपको पता है इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि जब भी ग्रहण हो उसे देखना नहीं चाहिए, कोई भी ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उसकी तरफ नहीं देखना है, हमें ऐसे हमेशा से कहा गया। लेकिन वेस्ट में ये चीज जो है वो नहीं कही गई। वेस्टर्न लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो फालतू की बातें हैं, इनको देख लेना चाहिए क्या होता है, इतना खूबसूरत नजारा है। वेल अगर आप खूबसूरत नजारा देखना भी चाहते हो तो उसके लिए भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, अदरवाइज यू शुड नॉट डू इट। सो एक बात तो पक्की है, हमारे बड़े और बुजुर्गों और पूर्वजों ने जो भी कहा है उसके पीछे रीजन जरूर है। हाँ, उनको बेशक समझाना हमें ना आया हो कि क्या साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, लेकिन उसके पीछे रीजन जरूर होता है अगर आप लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तो। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है एक फरमाइशी गीत प्ले करने का। अब जो कि फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से। जी हाँ, गाना भी बहुत ही प्यारा फरमाइश किया है उन्होंने। गाने का नाम है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। रफी साहब का वर्जन है ये। एंड थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह गजब की फरमाइशें, प्यारी फरमाइशें, खूबसूरत फरमाइशें, क्या कहा जाए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को। और बिना देर किए ये गाना आपका रफी साहब की आवाज में, एंड वी कैन नॉट कंप्लेन एट ऑल। मतलब रफी साहब की आवाज किसको अच्छी नहीं लगती है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं यूट्यूब और यूट्यूबर्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप भी यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना चैनल खोलेंगे और उसके बाद जो है वो उसे मोनेटाइज करेंगे और उसके बाद बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपकी भी अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अब यूट्यूब से पैसे कमाना जो है वो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा सा डिले जरूर कर सकता है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि वाई निव्या वाई, आई नो, यूट्यूब जो है एक बहुत ही बड़ा मीडियम है कमाई करने का और बहुत सारे लोग इस पूरी दुनिया में यूट्यूब मोनेटाइज करेंगे और उसके बाद बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपकी भी अर्निंग्स शुरू हो जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अब यूट्यूब से पैसे कमाना जो है वो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा सा डिले जरूर कर सकता है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि वाई निव्या वाई, आई नो, यूट्यूब जो है एक बहुत ही बड़ा मीडियम है कमाई करने का और बहुत सारे लोग इस पूरी दुनिया में यूट्यूब के थ्रू जो है वो पैसे

स्पॉन्सरशिप पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं, उसके बाद जो है अब यूट्यूब को मोनेटाइज करना जो है वो थोड़ा मुश्किल और थोड़ा देर से हो सकता है। जी हाँ, और क्या है वो माजरा, आइए जरा आपको बताते हैं। ऑल्दो ये जो चेंजेस है ये फरवरी 2027 से लागू होंगे, लेकिन यूट्यूब ने कह दिया है कि अब वो ये करने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले तो फरवरी 1 से जो नए क्रिएटर्स हैं दिल हैव टू हैव 8,000 क्वालिफाइड वॉचर्स इंस्टेड ऑफ 4,000। जी हाँ, जो पहले 4,000 वॉचर्स होते थे क्वालिफाइड वॉचर्स, अब वो 8,000 हो गए हैं। और 20 मिलियन शॉर्ट व्यू जो है वो 90 डेज में आपको करने हैं टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन। जी हाँ, और ये जो एग्जिस्टिंग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है क्रिएटर्स का, वो इफेक्टेड नहीं होंगे, जो ऑलरेडी जो है वो कमाते हैं, जो ऑलरेडी जो है इस चीज का हिस्सा पहले से बन चुके हैं उनको ये असर नहीं करेगा, लेकिन जो नए क्रिएटर्स होंगे, नए यूट्यूबर्स होंगे, उनके लिए ये काम करने वाला है। जी हाँ, सो जैसे मैंने कहा कि पहले 4,000 जो है वो आर्स की, वॉच आर्स की जरूरत होती थी यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन अब वो 8,000 आर्स हो गया है। आपने सही सुना। और जो नए क्रिएटर्स हैं उनको 1,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं प्लस 8,000 वॉचर्स प्लस 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज जो हैं चाहिए होंगे अगर उनको मोनेटाइज करना है यूट्यूब को। जी हाँ, तो ऑफ कोर्स हार्डर टू मोनेटाइज, और ये जो नई पॉलिसी है ये मोनेटाइजेशन को हार्ड बनाती है नए क्रिएटर्स के लिए, वाइल एग्जिस्टिंग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम क्रिएटर्स रिमेन अनअफेक्टेड। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी पार्टनर प्रोग्राम्स है, उनको कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन जो नए वाले हैं उनको होगा। और जैसे मैंने कहा कि फरवरी 1 से ये रूल्स जो है वो लागू हो जाएंगे। और अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि निव्या शर्मा हम भी यूट्यूब का चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं रहे थे, कुछ और हो जा रहा था, हम सोच रहे थे थोड़े दिन बाद बनाएंगे, तो मैं कहती हूं अभी बना लीजिए, क्योंकि अभी भी एटलीस्ट कुछ महीने बाकी हैं, क्या पता आप उस चीज को जो है वो कर पाओ। और अगर आप अभी ये बना लेते हो तो आपको वो 8,000 जो है वो वॉचर्स कंप्लीट नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4,000 वॉचर्स में ही आपकी बात जो है वो बन जाएगी। अभी आप सोच लीजिए कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब लिटरली आपके पास 5 से 6 महीने हैं। यू कैन डू इट इफ यू वॉन्ट टू, लेकिन अगर आप इससे डिले करते हैं तो आपको फिर वो नए वाले क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: आए असी भुले ना समाए साडे घर ते शरीफ ले आया नू साडे सारिया वालों जी आया
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Digicel, better together.
6: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प चीज हो रही है और इंटरनेट पर उसके बारे में काफी वायरल गिरी भी चल रही है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। प्लस इट्स सो हिलेरियस, मतलब इतनी हंसी वाली चीज है, आपको मतलब हंसा हंसा के गिरा देगी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे लिसनर्स को हंसी आए, उनका खून बढ़े, ये तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ, राइट? सो हुआ कुछ ऐसा है कि एक बंदा है जो कि, ये ऑफकोर्स इंडिया की स्टोरी है, सो इंडिया में एक बंदा है जो कि नॉर्थ इंडिया का है बेसिकली। अभी कुछ दिन पहले वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था क्योंकि उसने लंगर लगाया था। इफ यू डोंट नो लंगर, लंगर होता है जो कि जो टेंपल्स होते हैं, जो गुरुद्वाराज होते हैं और जो ऐसी जगहें होती है वहां पे आपको खाना दिया जाता है उन टेंपल सोसाइटीज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से या गुरुद्वारा सोसाइटी की तरफ से। यू नो व्हाट लंगर और भंडारा मींस, राइट? आप इसे लंगर कह सकते हैं, आप इसे भंडारा कह सकते हैं। आप लोग बोलोगे ठीक है, या हमने लंगर और भंडारा सुना है और मोस्ट प्रोबेबली आपने खाया भी होगा, बट यहां पर जो लंगर और भंडारा की बात हो रही है, दैट्स अ बिट डिफरेंट। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि अच्छा ऐसा क्या हो गया निवेशन में? वेल वेल वेल, एक बंदा है जो कि खाने का भंडारा यानी कि खाने का लंगर नहीं लगा रहा है बल्कि पेट्रोल का लंगर लगा रहा है। आप लोग बोलोगे है What are you talking about, Nivea? Well, well, well, जब मैं इस वीडियो को देख रही थी और जब मैं सोशल मीडिया पर उसके बारे में जान पाई, मुझे ऐसा लगा कि What? Are you even kidding me? Like, पेट्रोल का लंगर यानी कि पेट्रोल का भंडारा यानी कि पेट्रोल दिया जा रहा है फ्री में? But yeah, I was right. Yeah, वो सच में हुआ था। सो पंजाब में ये बंदा जो है वो फेमस है जो कि लिटरली जो है ऐसे भंडारे ऑर्गेनाइज करता रहता है, ऐसे चैरिटी ऑर्गेनाइज करता रहता है, लेकिन इसे चैरिटी वो नहीं कहता है, इसे वो भंडारा कहता है। और इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आपको उस भंडारे का पार्ट बनना है, मतलब अगर आपको वो पेट्रोल चाहिए जो कि वो लिटरली फ्री में दे रहे हैं, तो आपको जय माता दी बोलना पड़ेगा। जी हाँ, इनफैक्ट जो कार्ड वो देते हैं जिसके थ्रू आपको पेट्रोल मिलता है फ्री में, उस पे लिखा हुआ है जय माता दी। वो कहते हैं जय माता दी बोलिए और उसके बाद आप जो है वो फ्री में पेट्रोल लेकर चले जाइए। और जब इस बंदे ने ये शुरू किया था तो उसके पीछे आइडिया ये था कि इस वक्त पूरे के पूरे भारत में, इनफैक्ट पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ अगर किसी चीज की कमी है तो वो खाने की नहीं है बल्कि पेट्रोल की है। तो खाने के बजाय मुझे पेट्रोल का लंगर यानी कि पेट्रोल का भंडारा लगाना चाहिए। जी हाँ, दैट्स व्हाट ही थॉट। आई स्टिल से कि व्हाट अ रिमार्केबल थॉट, मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि कहां से आया। बट यहां पर जय माता दी करवाना है इस इंसान को चाहिए। ये कह रहा था कि मुझे एक ही चीज चाहिए, आपको जय माता दी बोलना है आके, आपको बस इसका पार्ट बनना है इस इनिशिएटिव का और आपको फ्री में पेट्रोल मिल जाएगा। ऑफकोर्स लोग इतने सारे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, वो भी कोई नॉर्मल पेट्रोल नहीं, अच्छा खासा पेट्रोल मिल रहा है, तो सब इसका पार्ट बनना चाहते हैं, सब फ्री में पेट्रोल चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज ही की बात है, चंडीगढ़ यानी कि जो ट्राई सिटी है, जो कि यू नो पंजाब की जो कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की, चंडीगढ़ में भी ये भंडारा जो है वो लगा हुआ है। आज 2 पेट्रोल पंप्स पे फ्री में पेट्रोल बिकने वाला है और लोग जो है वो क्रेजी हो गए और सोशल मीडिया पर ये चीज वायरल हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के चैरिटी करने वाले लोग देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट भंडारा लगाने वाले लोग भी देखे होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें भी देखी होंगी और यूनिक चीजें देखी होंगी आपने बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं आपने ऐसा इंसान देखा है जो कि फ्री में पेट्रोल बांट रहा है? पैसे नहीं, खाना नहीं, पेट्रोल। जी हाँ, अब आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ गानों का सिलसिला तो चलता रहेगा। अब जरा रुक करें खबरों की ओर। मुझे बताया कि रियलिटी चेक किसी को भी पसंद नहीं आता, और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हर जगह तो गड़बड़ चल रही है, तो फिर हमें बात करनी क्यों है खबरों की। भाई अपडेटेड रहना जरूरी है, अपडेट रहेंगे तभी तो आगे कर पाएंगे सारी चीजों की प्लानिंग, और आपको पता भी चलता रहेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है। बेसिकली अपडेटेड रहना बहुत बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि ईरान और अमेरिका जो है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईरान और अमेरिका के साथ। इनके बीच कुछ भी अच्छा होने का जो है वो शुरुआत हो ही नहीं पा रही है। मतलब बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखते हैं स्टेटमेंट देते हुए कि यू नो व्हाट, सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तब होता है जब उन्हें शेयर मार्केट जो है थोड़ी ऊंची चाहिए होती है, जब थोड़ी उनको अप चाहिए होती है। अगर इनको शेयर मार्केट को अप नहीं करना है और उनका मूड नहीं है, तब ये बिल्कुल भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। जी हाँ, सो इनकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदलती रहती है इसी बेस पर। और यहां पर सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते समय एक जहाज पर हमला हो गया है और क्रू सदस्य की मौत भी हो गई है। जी हाँ, सो इन दोनों के विवाद में हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलते समय एक जहाज को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाए जाने की खबर है। ब्रिटिश मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा है और एक क्रू सदस्य की मौत हो गई है। UKMTO ने अब बताया कि घटना के बाद ओमान कोस्ट गार्ड जहाज पर सवार बाकी क्रू सदस्यों को बचाने के अभियान में जुटा हुआ है। यह बताया गया कि मामले की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आई है और अब कुछ ही जहाज यहां से गुजर रहे हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले इस मार्ग से रोजाना 130 से अधिक जहाज गुजरते थे, लेकिन अब वो होना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो गया है।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
9: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए. डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक. जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ. और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com.
12: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
13: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
13: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
15: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
13: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
15: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ अमेरिका और ईरान की बातचीत कहां तक पहुंची है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने बताया है. जी हाँ, और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने सोमवार को कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत गंभीर स्तर पर जारी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी तक किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। कुशनर ने फोकस न्यूज से बातचीत में कहा कि अमेरिका और ईरान की विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच बातचीत संभवतः अब तक के सबसे मजबूत दौर में है, हालांकि यह अभी किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंची है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि वह ईरान के साथ अंतिम समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बीबीसी फारसी के मुताबिक यह समझौता प्रभावी रूप से विफल हो गया है क्योंकि इसके जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का रास्ता साफ नहीं हो सका। ट्रंप ने अपने ताजा बयान में यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान उस समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा जिसे अमेरिका जरूरी मानता है।

जी हाँ दोस्तों, वो तो फाइनली मुझे समझ आ गई है एक चीज, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको भी नहीं समझ आई है तो आप भी जरा समझ लो मेरे साथ यहाँ पर मिलकर। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा हम तुमसे थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, पर चलो ठीक है, फिर भी बता दो क्या समझाने की कोशिश कर रही हो। वेल, मैं हमेशा से ये सोचती रहती थी कि क्यों बुलेट ट्रेन को बुलेट ट्रेन कहा जाता है। मतलब बुलेट कितनी स्पीड से जाती है वो हमें पता है, लेकिन ट्रेन कितनी ही स्पीड से जा सकती है कि उसे बुलेट ट्रेन कह दिया। मतलब बुलेट ट्रेन तो बुलेट वाली स्पीड से ही हो, उसी को कहा जाना चाहिए, राइट? अब आपने बुलेट ट्रेन के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स जो है वो देखे होंगे। अभी तक की जो सबसे तेज और रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन है वो चाइना के पास है, लेकिन गेस व्हाट, चाइना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चाइना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बाकी सब चलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, सो चाइना ने एक और ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। वेल ऑफकोर्स अभी तो इसके ट्रायल चल रहे थे, लेकिन ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ट्रायल क्या बाकमाल तरीके से कंप्लीट हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी एक ट्रेन जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है मैग्लेव, जी हाँ मैग्लेव ट्रेन जो कि बुलेट ट्रेन है, उसके एक्सपेरिमेंट को किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या बखूबी कंप्लीट हुआ है। जी हाँ, 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे वो पहुंची है इन 5.3 सेकंड्स में। जी हाँ, 5.3 सेकंड्स में वो 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड में पहुंच गई। आप लोग बोलोगे कि अब हुई ना बात, अब हुई ना बुलेट ट्रेन, क्योंकि अभी तक बुलेट ट्रेन्स को ऐसे ही बुलेट ट्रेन कहा जाता था। मतलब वो तेज होती थी, पर इतनी तेज थोड़ी होती थी जितनी कि लिटरली बुलेट होती थी। लेकिन इसको अगर कहें कि बुलेट जितनी ही तेज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 800 किलोमीटर पर आर की स्पीड जस्ट 5.3 सेकेंड्स में अचीव करना और पकड़ लेना इज ट्रिमेंडस। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। तो चाइना ने कर लिया है काम, और मैं ये सोच रही थी कि सुरक्षा के तरीकों से कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। मतलब अगर इस स्पीड से कोई ट्रेन आ रही है और गड़बड़ हो जाए कहीं पे किसी ट्रैक पे, तो क्या इस ट्रेन को रोका जा सकता है जल्दी से? और अगर रोकने की कोशिश की गई तो क्या होगा? मतलब ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेट ट्रेन, और इतनी जल्दी ये पहुंचा देगी लोगों को कहां पर, लिटरली मतलब ये डिस्टेंस कितनी जल्दी कवर करेगी, लेकिन व्हाट इफ कुछ गड़बड़ हो जाती है किसी ट्रैक पर और जहां से ये गुजरने वाली है और इसे रोकना है, तो इसको रोकने के लिए कौन से लेवल की ब्रेक बनानी पड़ेगी, और वो ब्रेक भी अच्छे से लगाने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? मतलब मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी। सो ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस टू चाइना फॉर मेकिंग सच एन अमेजिंग ट्रेन जो कि लिटरली इतनी ज्यादा फास्ट है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ होती है भगवान ना करे तो फिर इसको रोकना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, बेलगाम घोड़े की तरह चलेगी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम।

0: Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से सेगमेंट में। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और अब इवनिंग वाइब में ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो इसके लिए फरमाइशें भी हमारे पास पहले ही आ चुकी है, रिकमेंडेड सॉन्ग्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर आपके पास भी कोई गाना है जो आप रिकमेंड करना चाहते हो तो जल्दी से कीजिए। And in fact, आज एक बहुत ही खास शख्सियत का जन्मदिन भी है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शायरी वो करते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने वो लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत पिक्चरें वो बनाते हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बात कर रही हूँ गुलजार साहब की। जी हाँ, गुलजार का है आज जन्मदिन। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको कोई शेर व शायरी आती है ना, तो आज गुलजार साहब के लिए एक हो ही जाए। जी हाँ, सो ऑफकोर्स गुलजार साहब की शेर व शायरी की बात तो बहुत लोग करते हैं, तारीफ बहुत लोग करते हैं, उनके गानों की तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके जो लिखे हुए शब्द हैं उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। लेकिन एक लाइन्स है, मतलब कुछ लाइंस है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो उन्होंने कही है बुढ़ापे के बारे में, और ख़ासकर अपने पार्टनर के बुढ़ापे के बारे में, जो कि बेहद खूबसूरत है और मेरे दिमाग से कभी भी नहीं निकल सकती है। वो मैं बोलने वाली हूँ और हम उनके गाने भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद गुलजार साहब आपको। ऐसे ही लिखते रहिए, ऐसे ही हमारे दिल को लूटते रहिए अपने शब्दों से और अपने लफ्जों से, बिकॉज वी लव देम। जी हाँ, और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यही हमारी है दुआ इस साल आपके लिए। जी हाँ, इसी के साथ जो गाना मैं ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की शुरुआत में प्ले करने वाली हूँ वो है जो बात तुझ में है। जी हाँ, खूबसूरत सा गाना रफी साहब की आवाज में आप सबके लिए।

0: हॉस्टल में तेरा।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, लेकिन गुलजार साहब का जन्मदिन है तो उनकी लिखी हुई या कही हुई लाइंस की तो बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लफ्जों से उन्होंने हमें अपना दीवाना बनाया है, लेकिन उनमें से एक शायरी जो है, उनकी एक लिखावट जो है, वो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है और वही मैं बोलने वाली हूँ। और ये उन्होंने क्यों बोला है वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं बता भी दूंगी, लेकिन पहले आप सुनिए उन्होंने कहा क्या है। वो कहते हैं, चांदी उगने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। चांदी उगने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हमला शाखे गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पे अच्छा लगता है। क्या बात है, मतलब कितना खूबसूरत चीज है। आप जब जमा होते हो, आप जब हसीन होते हो, तो कितनी ज्यादा शायरी जो है वो ऐसे खूबसूरत सीरत या सूरत के लिए लिखी जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है तो हम उतने खूबसूरत नहीं रहते, बालों में सफेदी आ जाती है, जी हाँ रिंकल्स आ जाते हैं, वजन भी बढ़ जाता है। लेकिन लेकिन लेकिन ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपको ये कहे तो आप क्या बोलोगे? आप शुक्रिया अदा करोगे भगवान का कि क्या बात है भगवान, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस इंसान को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स हम हसीन नहीं रहते जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन अगर उसे भी इतनी बखूबी और इतनी खूबसूरती से कहा जा रहा है और उसकी भी तारीफ इतनी खूबसूरती से की जा रही है, तो ये जो पार्टनर मेरी लाइफ में है इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जी हाँ, तो मतलब आप खुद सोचिए, फिर से एक बार आपको बोलूंगी क्योंकि ये लाइन्स डिजर्व करती हैं एक बार फिर से। जी हाँ, मतलब उम्र बढ़ना और बुढ़ापा आना, वजन बढ़ना, किसी ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन गुलजार साहब क्या लिखते हैं। चांदी उगने लगी है बालों में, ये उम्र तुम पर हसीन लगती है। यूं भी अच्छा ही लगता है, लेकिन देखकर अपनी हमला शाखे गुलमोहर फूला फूला रहता है। अब जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वजन तुम पर अच्छा लगता है। क्या बात है। जी हाँ, यहाँ पर एक खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, जो कि अगेन एक फरमाइशी गीत है, और ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। उन्होंने भी ये फरमाइश पहले ही कर दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जब ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट प्ले करेंगे और शुरू करेंगे तभी इस गाने को प्ले किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल रिकमेंडेशन प्रेमा आंटी। हमेशा की तरह आपकी फरमाइशें बहुत जबरदस्त होती हैं, बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही खास होती है। और यहाँ पर जो उन्होंने किया है गाना फरमाइश, उसका नाम है खूबसूरत सा कोई आधा धड़कन कहती है, कोई आया धड़कन कहती है। जी हाँ, आशा जी का और लाजवंती जी है इसमें, और आशा जी का गाया हुआ ये खूबसूरत सा गाना। थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें के लिए ऐसे ही देते रहिए, प्यारे प्यारे रिकमेंडेशंस और प्यार भी हमें और हमारे इस प्रोग्राम को। ये रहा आपका ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पे, वरना इसके बिना मुझे कौन देखता अंधेरे में। जी हाँ, ये खूबसूरत सी लिखावट गुलजार साहब की है। और गुलजार साहब की बात मैं जब भी करती हूँ, मैं कहती हूँ ना कि इतनी प्यारी प्यारी लाइंस उन्होंने लिखी हैं, दी हैं हमें। वो कहते हैं, बिछड़ कर फिर मिलोगे यकीन कितना है, बिछड़ कर फिर मिलोगे यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे गुलजार साहब लिटरली, मतलब मुझे अगर गुलजार साहब से मिलने का मौका मिले ना, मैं पता नहीं है मुझे, मैं क्या उनसे पूछूंगी। मैं बस उनको बोलूंगी कि गुलजार साहब, मैं बस नहीं बोलूंगी, आप बोलते रहिए, बिकॉज आई जस्ट लव व्हाटएवर ही सेज। जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना जो कि अगेन एक रिकमेंडेड सॉन्ग है, और ये रिकमेंडेड सॉन्ग जो है वो आया है हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से। जी हाँ, गाना बहुत ही खूबसूरत है, गाने का नाम है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जैसे मैंने कहा, गाना बेहद बेहद बेहद खूबसूरत है, और ये रफी साहब का गाया हुआ गीत है, और जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है चीज, बट इसके जो लिरिक्स है, इसके जो बोल है, वो भी अपने आप में बाकमाल है। थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह आपके रिकमेंडेशन जो होते हैं ना, वो लिटरली लाजवाब होते हैं, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सो मेरे लिसनर्स, आप भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो जल्दी से कर दीजिए। और सर, आपका रिकमेंडेशन ये रहा।

दोस्तों इसी के साथ गुलजार साहब की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन गुलजार साहब लेखक बनने से पहले, ये शायर बनने से पहले गैराज में काम किया करते थे। जी हाँ, पार्टीशन के बाद वो मुंबई आ गए थे और मुझे नहीं पता कि आपको पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि उनके पिता को उनका लिखना पसंद नहीं था। जी हाँ, तो पेट पालने के लिए जब वो मुंबई आए तो उन्होंने हाथों में ग्रीस लगाकर गाड़ियों को चमकाना शुरू किया। वो गाड़ियों को ठीक करते थे, गाड़ियों को चमकाते थे, वो गैराज में काम करते थे, लेकिन लिखने का शौक उन्हें हमेशा से था। मतलब वही इंसान जो आपको अपने शब्दों से घायल कर देता है, वो किसी वक्त अपने हाथों से ग्रीस लगाकर गाड़ियों को ठीक किया करता था। जी हाँ, अब क्योंकि पिताजी को पसंद नहीं था उनका शेरो शायरी करना, तो यहां पर उन्होंने अपना नाम गुलजार रख लिया। जी हाँ, गुलजार उनका रियल नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना नाम गुलजार इसलिए रखा था क्योंकि वो अपने पापा से यानी कि अपने पिता से अपनी पहचान छुपाना चाहते थे। एक और गाना दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर, और फिर मैं इस गाने के पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले गाना सुनते हैं।

जी दोस्तों, मैंने कहा ना कि ये कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना जो आपने अभी सुना, ये शेखर कपूर की मूवी का गाना है, मासूम मूवी का, जो कि 1983 में आई थी। कहा जाता है कि इसमें डायरेक्टर जो है वो शेखर कपूर थे, और शेखर कपूर गुलजार साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों से रिलेटेड हमें एक गाना चाहिए और ऐसी सिचुएशन है, और आप हमारे लिए गाना लिख दीजिए। जब गुलजार साहब उन्हें गाना लिख के देते हैं और वो उस गाने को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो उन्हें वो गाना पसंद नहीं आता। वो वापस से जाते हैं गुलजार साहब के पास और कहते हैं कि गुलजार साहब, मैंने ऐसा गाना नहीं सोचा था, तो मुझे ये गाना पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसे रख लीजिए, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुलजार साहब ने बिल्कुल नाराज ना होकर सीधा वो गाना वापस ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जी हाँ, अब ये बात जब शबाना आजमी को पता चली, क्योंकि शबाना आजमी उस वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, शबाना आजमी को जब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है और शेखर कपूर ने ऐसा किया है, तो सबसे पहले वो शेखर कपूर के पास गई और उनको डांट लगाई। उन्होंने कहा कि शेखर, सबसे पहले तो तुम बच्चों के बारे में गाना बनवा रहे हो, और तुम किसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो? गुलजार साहब को? मतलब बिल्कुल मत करना ये, वो इस मामले में जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। बस फिर क्या था, अब शबाना आजमी इस पिक्चर में भी थी, तो शेखर कपूर को डर लगने लग गया कि शबाना आजमी अगर इस वजह से पिक्चर छोड़ के चली गई तो गड़बड़ हो जाएगी। शबाना आजमी ने सीधा सीधा कह दिया था कि गुलजार साहब का वो लिखा हुआ गाना जो आपने अभी सुना, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, वो तो आपको रखना पड़ेगा। तो बस शेखर डर गए वहीं पर ही, और उन्होंने उस गाने को ले लिया और अपनी मूवी में डाल दिया। और आज भी ये गाना इतना फेमस है, मतलब आज भी हम बच्चों को इस गाने पे परफॉर्म करवाते हैं, उनको ये गाना सुनाते हैं और उनको इस गाने पे वाइब करवाते हैं। आप खुद सोचिए कि ये गाना बनते बनते रह गया था, अगर शबाना आजमी नहीं होती तो शायद ये गाना हमारे पास होता भी ना। इसलिए कहते हैं कि कभी कभार जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही होती वो दुनिया को बहुत ज्यादा खास लग जाती है। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। गुलजार साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद एक बार फिर से, वंस अगेन, और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है और जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल, फन करेंगे, मजे करेंगे, बहुत सारे गाने आपको सुनाएंगे, गपशप करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? वेल ऑफ कोर्स, आपको मजे करने हैं और आपको अच्छे से रहना है, काइंड बनना है और खुश रहना है, दैट्स अबाउट इट। जी हाँ, और ये जो लास्ट सॉन्ग है, यानी कि जो गाना है जिससे हम अपने प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं, ये वो पहला गाना है जो गुलजार साहब ने अपनी जिंदगी में लिखा है और जो कमर्शियली बना है। जी हाँ, मोरा गोरा गोरा अंग ले ले। जी हाँ, ये गुलजार साहब का लिखा हुआ पहला गीत है। सुनते हैं इसको और फिर मिलेंगे अब आपसे कल। बाय बाय, सी यू, टाटा।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ग्रेट बैरियर रीफ से आई अच्छी खबर। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन के पास स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ से राहत भरी खबर है। मौसम में आए बदलाव और समुद्री तापमान में थोड़ी गिरावट के कारण मूंगो यानी कि कोरल्स में सुधार और रिकवरी के संकेत मिले हैं। वहीं 2032 ओलंपिक्स के लिए विक्टोरिया पार्क का नया लुक। जी हाँ, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। हाल ही में विक्टोरिया पार्क के नए कॉन्सेप्ट डिजाइन जारी किए गए हैं। ओलंपिक स्टेडियम और एक्वेटिक सेंटर बनाने के बाद भी इस पार्क का 2/3 हिस्सा आम जनता के लिए हरा भरा पब्लिक स्पेस बना रहेगा। वहीं ब्रिस्बेन का सबसे बड़ा प्राइड फेस्टिवल, ब्रिस्बेन में शहर का सबसे बड़ा आर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। इसमें 100 से ज्यादा इवेंट्स, पार्टी बोट्स और आकर्षण का केंद्र 15 मीटर की तैरती हुई विशाल बत्तख होगी। शहर भर में इसे लेकर काफी उत्साह बना हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 2026 की जनगणना यानी कि सेंसस। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों नेशनल सेंसस यानी जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। ब्रिस्बेन प्रशासन ने नागरिकों से समय पर अपनी जानकारी दर्ज करने की अपील की है ताकि आने वाले समय में शहर के स्कूल, अस्पताल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ बस नेटवर्क में बड़ा सुधार। ब्रिस्बेन शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए प्रशासन नए और एडवांस बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT नेटवर्क के विस्तार पर काम कर रहा है। नए रूट्स और इलेक्ट्रिक बसों के आने से ब्रिस्बेन के डेली पैसेंजर्स का सफर अब और भी आसान और इको फ्रेंडली होने वाला है। वहीं स्प्रिंग सीजन और ट्यूलिप फेस्टिवल। ब्रिस्बेन में बसंत का मौसम आते ही टूरिज्म का मजा दोगुना हो गया है। शहर के आसपास के इलाकों में विशाल ट्यूलिप और फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले झारखंड में बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द। सबसे पहली खबर झारखंड से है। लंबे समय से चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC CGL भर्ती परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं किसानों के लिए बड़ी राहत, तमिलनाडु के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने किसानों के 75,000 रूपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का ऐलान किया है। वहीं रेलवे स्टेशनों पर अब मिलेगा साफ पानी। अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं जब भी आप भारत जाते हैं तो एक अच्छी खबर है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में कई बड़े रेलवे स्टेशनों के पीने के पानी में कमियां पाई गई। इसके तुरंत बाद एक्शन लेते हुए रेल मंत्रालय ने देशभर के करीब 20,000 से ज्यादा स्टेशनों पर आधुनिक टैंक टू टैप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ विशाखापट्टनम को मिला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात। भोगपुरम में नया बना अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कमर्शियल उड़ानों के लिए पूरी तरह खुल गया है। वहीं अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का नया कदम, स्पेस साइंस के शौकीनों के लिए खबर। भारतीय वैज्ञानिक एक अटैची यानी सूटकेस के आकार के छोटे स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। ये छोटा सा उपग्रह ब्रह्मांड के उन शुरुआती दिनों के सिग्नल पकड़ेगा जब पहले तारे भी नहीं बने थे। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव की अपडेट। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक बड़ी अपडेट है। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच हॉर्मुज की खाड़ी यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। इस घटना के बाद ओमान के कोस्ट गार्ड मदद के लिए पहुंचे। वहीं सऊदी अरब का नया तेल सप्लाई रूट। तेल की सप्लाई प्रभावित ना हो इसके लिए सऊदी अरामको ने एक नया रास्ता निकाला है। हॉर्मुज की खाड़ी से बचे बिना ही UAE के फुजेरा तट से सीधे जहाजों में तेल ट्रांसफर करके एशियाई देशों को भेजा जा रहा है। वहीं इंडोनेशिया में भूकंप के झटके। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में एक चिंताजनक खबर है, जहां 5.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया है। हाल के दिनों में लगातार आए झटकों की वजह से स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। वहीं जब एआई मैनेजर ने इंसान को किया फायर, जी हाँ, टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी ही अजीब और हैरान करने वाली खबर है। सैन फ्रांसिस्को के एक रिटेल स्टोर में मैनेजिंग का काम देख रहे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम ने अपने ही एक इंसानी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। वहीं फ्रांस में वाइन उत्पादन पर पड़ा मौसम का असर, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का असर अब फ्रांस के मशहूर वाइन उद्योग पर भी दिखने लगा है। गर्मी और मौसम में आए अचानक बदलावों की वजह से इस साल फ्रांस में अंगूर की फसल की कटाई इतिहास में सबसे पहले शुरू कर दी गई है। ऐसे के साथ ग्लोबल इकोनॉमी और टेक में निवेश, दुनिया भर के बाजारों में महंगाई की चिंता बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल टेक कंपनियां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संन्यास का संकेत, फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक भावुक कर देने वाली खबर है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में इशारा किया है कि 2026 या 27 का सीजन उनके पेशेवर करियर का आखिरी सीजन हो सकता है। वहीं T20 क्रिकेट का बढ़ता दायरा, क्रिकेट की दुनिया में T20 फॉर्मेट में दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। ICC अब कई नए देशों में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रही है। वहीं ओलंपिक 2028 की तैयारियां तेज, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 को लेकर एथलीट्स की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। कई देशों के खेल संघों ने युवाओं को मौका देने के लिए नए ट्रेनिंग कैंप शुरू किए हैं। वहीं फॉर्मूला 1 रेसिंग में नए नियम, मोटर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए खबर। F1 यानी फॉर्मूला 1 में कारों के इंजन और सेफ्टी को लेकर नए नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं। नई गाड़ियों को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ताकि रेसिंग के रोमांच के साथ साथ कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सके। वहीं टेनिस, नए युवाओं का जलवा, टेनिस कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से पहले युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिग्गज खिलाड़ियों को चुनौती देते हुए कई नए अनसीडेड खिलाड़ी टॉप 10 रैंकिंग वाले स्टार्स को मात दे रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: Sell better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हां तुसीं बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101.1 ते जीआर जी संदेश शौलक दे नाल तुसीं बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो ब्रसानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, ब्रसानी @ brasani.com साडी ईमेल आई डी है, जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसीं ओह अपनाओ, पर साडे गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे नाल ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋ।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी। आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ साल खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत का नाम रोशन किया है। BFTA कांस वेनिस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग ते संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित किया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसा जिन्हां ने विदेश विच वाही वटोरी हैगी है। शायद बहुत बारे तो थोनू पता होना, बहुत बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज है तो अदर लैंग्वेज जी आती हैगी है तो उस बारे सानू शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं होंगे। तो चल मैं तुम दसदी हाँ, जे थोनू समझ आती हुई तो जरूर देखियो क्योंकि फिल्म बहुत ज्यादा वधिया है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। इन्होंने फिल्मों के जड़ियां पूरी दुनिया के छाई हुई ने तो जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस सब तो पहला नाम जो आता है बूंग जी। हाँ ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग है फिल्म का नाम। तो बूंग ने ना हाल ही बाफ्टा अवार्ड 2026 बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश में निकलता। फिल्म मणिपुर जाति तनाव से सीमा दी चुनौतियां नूं एक बच्चे के नजरिए दिखाती हैगी है जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जाती है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 FM ते जी आर जी संदेश चौलक दे नाल तुसीं बने होए हो। अगली फिल्म जिहड़ी हैगी है उसका नाम है जी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। पायल कपाड़िया की फिल्म हैगी है ते फिल्म 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल विच ग्रैंड पिक्स जीती सीगी। कैन फिल्म फेस्टिवल दे विच कानी कुश्रुति अते दिव्या प्रभा इस विच लीड रोल दे विच है ते मुंबई दिया दो नर्सां दी इमोशनल यात्रा दिखाउंदी है कि है। गोल्डन ग्लोब विच दो नॉमिनेशन बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म ते बेस्ट डायरेक्टर ते गोथम अवार्ड्स NYFCCA LA शिकागो आदि तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अवार्ड जीते ने। बाराक ओबामा ने इसनू 2024 दी टॉप फिल्म चुनिया सीगा।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने एम ते जी आर चे संदेश चौलक दिनाल से बने हुए हो। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम हैगा मसान, नीरज गायवान दी जैप्यू फिल्म। वाराणसी विच दो कहानियां, देवी जिस जो रिचा चड्डा बने सी ते दीपक जो विकी कौशल बने सी दी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज, ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

जीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जीत थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है किया ऑल दैट ब्रीथ्स। ये नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन नूं बचाउंदे है कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते है कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिलया है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

अजी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल से बने होयो। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम हैगा इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, ओह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंडू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे। तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच है कि नहीं। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लेने का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा वह भी दस ही दिनी है। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित है। की है फिल्म नू वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच एफ आई PRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा की कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर है करो तुम साढ़े रेडियो बरसोनी 101.1 फेसबुक पेज है जी, बरसोनी @bersoni.com साथ ईमेल आई डी है जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर गल्लबात जरूर करो है ना। ते बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो। सत श्री अकाल।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशन। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशन ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Adam, I am your only Adam.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। वैदिक कैलेंडर में इस महीने को श्रवण मास कहते हैं और इसी महीने की पूर्णिमा फुल मून के दिवस भगवान श्री बलराम का आविर्भाव महोत्सव मनाया जाता है। तो 28 तारीख अगस्त को इस बलराम जयंती के उपलक्ष्य में हम इन दो सप्तों तक आप सभी की सेवा में श्री बलराम जी की महिमा प्रस्तुत करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय में नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषि गणों का वर्णन मिलता है। ये नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसी स्थान पर कलयुग के आरंभ में वर्णन मिलता है कि बहुत ही बड़ी संख्या में लगभग 88,000 ऋषिगण इस नैमिषारण्य वन में एकत्र हुए थे और ये वो समय था जब कलयुग आरंभ हुआ था। तो इतने सारे संत पुरुष और ऋषियों की सभा में उन्होंने महान संत उग्रश्रवा सूत गोस्वामी को कहा था, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपटमानुषः। अर्थात कृतवान किल कर्माणि, जिन जिन कार्यों को किया गया किसके द्वारा, सह रामेण केशव, जो केशव ने किया, कृष्ण ने किया राम के साथ, सह रामेण। भगवान के अवतारों में तीन राम है, एक है परशुराम, दूसरा है दशरथ नंदन राम और ये तीसरा है बलराम। तो केशव के साथ, कृष्ण के साथ जो राम है वे है बलराम। तो यहां सह रामेण केशव का अर्थ है जो कार्य किए गए कृष्ण के द्वारा बलराम के साथ। फिर अतिमर्त्यानी भगवान, अतिमर्त्यानी का अर्थ है अलौकिक या सुपर ह्यूमन, अर्थात जो अलौकिक काम भगवान होते हुए उन्होंने किया, अर्थात ये ऐसे कार्य है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते, अलौकिक कार्य है जो केशव ने बलराम के साथ किया, आश्चर्यजनक कार्य। देखने में वो मनुष्य जैसे लग रहे थे परंतु वास्तव में मनुष्य नहीं थे। गूढ़ कपट मानुष, गूढ़ का अर्थ है प्रच्छन्न यानी मास्ट एस, या सामान्य भाषा में आप कहेंगे नकाब पहनकर। तो किसका नकाब पहनेंगे, कपट मानुष, भगवान होते हुए एक कपट मनुष्य का आवरण धारण करेंगे, यानी बाहर से जो दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं है, बाहर से सामान्य मनुष्य जैसे दिखते हैं परंतु अंदर से भगवान है। तो ये कपट ही तो हुआ, भगवान के द्वारा कपट क्या है कि वो भगवान होते हुए मनुष्य जैसे दिखते हैं जब यहां आते हैं। तो कपटता तो उसी को कहते हैं ना, क्या आप कुछ है और दिखते हैं कुछ और, आप बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, आप है कुछ और जोड़ जाड़ के कुछ और बताएंगे। तो गूढ़ कपट मानुष, गूढ़ का अर्थ ये भी होता है कि यद्यपि कुछ लोग जानते हैं कि ये भगवान है, ये मनुष्य नहीं है, परंतु ये भगवान ऐसी लीला करते हैं जैसे लगता है कि कुछ डाउट है, कुछ संदेह है कि ये भगवान होकर ऐसे काम करते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। इसलिए जो कोई जानते हैं कि ये भगवान है, जैसे ऋषि मुनि देवतागण इत्यादि, वो लोग भी ऐसे संशय में फंस जाते हैं, संदेह करने लगते हैं। और जो पहले से जानते ही नहीं है वो तो ऐसे ही नहीं जानते हैं कि ये भगवान है। इसी कारण जब भगवान मनुष्य का रूप धारण करके ऐसी लीला करते हैं तो उनको समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऋषि मुनि लोग पूछते हैं नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी को कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रियाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कार्य किए, तो भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। इसी आधार पर आजकल धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद को अवतार होने की घोषणा कर ली है। अब तो भगवान का अवतार होना सामान्य व्यापार बन चुका है।
कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम इस प्रकार के अवतार न थे। श्री कृष्ण अपने आविर्भाव या प्राकट्य काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिवर्तित हो गए थे और फिर तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहां चले गए, जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक है, श्री वसुदेव के अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है त्यों त्यों यह सब ज्ञान होता जाता है। किंतु यहां ये ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। जैसे 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं, तो उसी प्रकार भगवान श्री बलराम के कार्य भी अलौकिक है। जिस समय पांडवों तथा कौरवों के मध्य में युद्ध की परिस्थिति आ गई, ये युद्ध ना होने के लिए कई प्रयास किए गए। भगवान श्री कृष्ण भी दूत बनकर गए थे कौरवों के पास उन्हें समझाने के लिए, परंतु दुर्योधन किसी प्रकार का समझौता करना ही नहीं चाहता था। तो जब युद्ध होना निश्चित हो गया तो दोनों पक्ष अपने सैन्य दल को एकत्र करने लगे। उन दिनों ये सारी पृथ्वी भारतवर्ष कहलाती थी। इसी कारण देश विदेश के राजा महाराजागण इस युद्ध में भाग लेने के लिए अपना पक्ष चुनने लगे। तो सैन्य दल एकत्र करने के हेतु से पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन, ये दोनों कृष्ण की राजधानी द्वारका आए। दुर्योधन तो भगवान श्री कृष्ण के संधी है डायरेक्ट। दुर्योधन की सुपुत्री लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के सुपुत्र सांब से हुआ था और दूसरी ओर पांचों पांडवों की माता कुंती देवी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। वसुदेव की बहन जो कि 5 पांडवों की माता है, जो कुंती के नाम से विख्यात है, जन्म से ही उनका नाम प्रिथा था। ये प्रिथा और वसुदेव दोनों महाराज शूरसेन की संतान थी। महाराज शूरसेन की अपने पिता के बहन के पुत्र से बहुत अच्छी मित्रता थी। उस मित्र का नाम था महाराज कुंती भोज। क्योंकि महाराज कुंती भोज संतानहीन थे और महाराज शूरसेन के बहुत ही निकट मित्र थे, इसी कारण महाराज शूरसेन ने अपनी सुपुत्री प्रिथा को महाराज कुंती भोज को गोद दिया था। तो प्रिथा कुंती के नाम से जानी गई जब से महाराज कुंती भोज ने उसे गोद लिया था। और क्योंकि ये कुंती कृष्ण के पिता वसुदेव की सगी बहन थी, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ भी बहुत ही निकट संबंध था। वे दोनों फर्स्ट कजन्स थे। और केवल इतना ही नहीं, परंतु अर्जुन कृष्ण के जीजाजी भी थे, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ विवाह किया था। और फिर अर्जुन तो कृष्ण का मित्र भी तो था। तो दुर्योधन कृष्ण के समधी थे और अर्जुन कृष्ण के कजन थे। तो महाभारत के युद्ध में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास जाते हैं द्वारका उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए। और इन दोनों आपस के विरोधियों का कृष्ण के साथ बहुत ही निकट संबंध है और इसी कारण बलराम के साथ भी उनका निकट संबंध है। तो क्या करेंगे, बलराम जी सोच रहे थे कि यह परिवार के मध्य में झगड़ा हो रहा है, तुम दोनों हमें बीच में फंसाएंगे। तो बलराम जी को यह अच्छा नहीं लगा। बलराम जी का एक दूसरा नाम है बलभद्र। भद्र का अर्थ है सिविलाइज्ड, माने
सब प्रकार के नियम का पालन करते हैं, नियम अनुसार काम करते हैं, और जो कृष्ण है वो अभद्र दर्शाते हैं। बचपन से उनके विषय में कई कंप्लेंट्स आते हैं, उन पर कई आरोप दर्शाए जाते हैं, उनके बारे में शिकायत मिलती है, माखन चोरी करता है, वस्त्र चुराता है, बहुत से ऐसी हरकतें करते हुए हम देखते हैं जो सभ्य पुरुष नहीं करते। बलराम के विषय में कोई कंप्लेंट नहीं आती थी, परंतु कृष्ण के विषय में हमेशा आती थी। बलराम जी बहुत ही सभ्य पुरुष जैसे रहते थे, तो क्योंकि बलराम जी अधिक सदाचारी थे, इसी कारण व्रज में उनका सब सम्मान करते थे। वे कभी कुछ गड़बड़ काम नहीं करते थे, परंतु कृष्ण ऐसे नहीं थे, वे बड़े ही नटखट थे। परंतु बलराम शांत स्वभाव के है, सदाचारी है, इसलिए भद्र है, बलभद्र, बलवान होते हुए भी भद्र है। तो उनको लगा कि आपस में परिवार के मध्य लड़ाई झगड़ा होगा और आए हैं बुलाने के लिए, ये भद्र होते हुए मैं कैसे बीच में पड़ूं। तो उन्होंने कृष्ण को कहा कि दोनों आ रहे हैं बुलाने के लिए, तो क्या करे। बलराम जी ने कहा कि मेरा तो ये विचार है कि हमें पारिवारिक झगड़ा में बीच में फंसना नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा कि ये दोनों बुलाने के लिए आ रहे हैं, तो किसी को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना। तो बलराम जी ने कहा कि दोनों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि दोनों को नहीं सपोर्ट करेंगे तो दोनों के साथ संबंध बिगड़ जाएगा, इसलिए किसी एक को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। तो जिसको सपोर्ट ना किया फिर उसके साथ संबंध बिगड़ जाएगा। तो बलराम ने कहा मैं तो भाई जा रहा हूं। उन्होंने जैसे छुट्टी ले ली, तो बलराम ने इस प्रकार से छुट्टी ले ली किस लिए कि किसी के पक्ष में लड़ाई नहीं करना है, इसलिए छुट्टी ले ली। कृष्ण ने कहा देखो भैया, ये लड़ाई, ये युद्ध तो धर्म और अधर्म के मध्य में हो रहा है। आपको तो पता है कि ये बेचारे पांडव लोग सही है, वो गलत नहीं कर रहे हैं, और दुर्योधन पापी है, बदमाश है, अधर्मी है, तो आपके विचार में उनके साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पापियों को दंडित नहीं करना चाहिए ना। वो बात ठीक है, परंतु वो दुर्योधन मेरे शिष्य है, कोई दूसरा होता तो देख लेता। तो फिर कृष्ण ने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं भी सोच रहा हूं कि परिवार में जब ऐसा कुछ हो तो उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, परंतु यदि आप चले गए तो यहां द्वारका में रहेगा कौन, यहां द्वारका में भी तो कोई होना चाहिए। नहीं, तुम किसी तरह से संभालो, मैं तो जा रहा हूं, मैं किसी की ओर से युद्ध नहीं करूंगा, धर्म हो या अधर्म हो, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं तो जा रहा हूं। कहां जाएंगे आप? और मैं तो तीर्थ यात्रा जाऊंगा, जैसे हम कभी कभी घूमने के लिए जाने के लिए कहीं छुट्टी लेते हैं, हम भी कुछ यात्रा पर निकल जाते हैं। तो इस संबंध में भागवत के श्लोक में कहा गया है, श्रुत्वा युद्धोद यमम रामः कुरुणाम सह पांडवई तीर्थाभिषेक व्याजेना मध्यस्थः प्रययौ किला। कि जब बलराम ने सुना कि पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए कौरव युद्ध की तैयारी में लगे हैं, तो निष्पक्ष होने के बहाने वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। व्याजेना का अर्थ है उसके बहाने, अर्थात ये निष्पक्ष रहना, ये एक बहाना था। भगवान की क्या योजना होती है हमें सहज में समझ में नहीं आती। तो चलिए इस कथा में आगे बढ़ते हैं। तो उनकी यात्रा में सर्वप्रथम वो द्वारका से प्रभास गए, तो उस तीर्थ स्थान प्रभास में स्नान करके तथा देवताओं, ऋषियों, पितरों और प्रमुख मनुष्यों का सम्मान करके वे ब्राह्मणों के साथ सरस्वती नदी के उस भाग की ओर गए जो पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में मिलती है। इसके बाद भगवान बलराम ने विशाल बिंदु सरस सरोवर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ और पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती की यात्रा की। उन्होंने यमुना और गंगा के तट पर स्थित सभी पवित्र स्थानों के भी दर्शन किए और फिर वे नैमिष वन या नैमिषारण्य आए, जहां महान ऋषि एक विस्तृत यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान बलराम के आगमन को पहचान कर लंबे समय से अपने यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त ऋषियों ने खड़े होकर प्रणाम करके और उनकी पूजा करके उनका उचित स्वागत किया। इस प्रकार अपने साथ आए हुए पार्षदों या ब्राह्मणों के साथ पूजित होने के बाद भगवान बलराम ने एक आदरणीय आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि व्यास देव के शिष्य रोम हर्षना बैठे ही रहे थे,
भगवान श्री बलराम ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए कि सूत जाति के इस व्यक्ति ने न तो खड़े होकर आदर दिया, न प्रणाम किया और न ही हाथ जोड़े, और वह सभी विद्वान ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। तब भगवान श्री बलराम ने कहा, क्योंकि अनुचित रूप से मिश्रित विवाह से उत्पन्न ये मूर्ख इन सभी ब्राह्मणों और यहां तक कि मुझ धर्म के रक्षक से भी ऊंचे स्थान पर बैठा है, इसलिए यह मरने के योग्य है। यद्यपि ये दिव्य ऋषि व्यास का शिष्य है और इसने उनसे धर्म शास्त्रों, इतिहास और पुराणों सहित कई शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी इस अध्ययन से इनमें अच्छे गुण नहीं आए हैं, बल्कि शास्त्रों का उसका अध्ययन किसी अभिनेता के अपने अभिनय को याद करने जैसा है, क्योंकि वो ना तो संयमी है और ना ही विनम्र, और अपने मन पर विजय पाने में असफल रहने के बावजूद व्यर्थ ही स्वयं को एक विद्वान मानता है। तो यहां क्या हो रहा है वो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति व्यास आसन पर बैठा होता है तो सभा में प्रवेश करने वाले किसी विशेष व्यक्ति के स्वागत के लिए उसे आम तौर पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इस मामले में स्थिति अलग थी, क्योंकि भगवान बलदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए यद्यपि सभी ब्राह्मणों द्वारा रोमहर्षण सूत को व्यास आसन के लिए चुना गया था, फिर भी उन्हें वहां उपस्थित अन्य विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों के व्यवहार का पालन करना चाहिए था और ये जानना चाहिए था कि भगवान बलराम साक्षात परम भगवान है, उन्हें हमेशा सम्मान दिया जाना चाहिए, भले ही एक साधारण व्यक्ति के मामले में ऐसे स्वागत करने की आवश्यकता न हो। जब कोई विद्वान हो जाता है तो उनमें आपो आप कोमलता आ जाती है, और जिन भगवान को सब प्रणाम कर रहे थे उन सभी को देखकर भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया और ना ही किसी और प्रकार से सम्मानित किया। तो यहां ये सिद्ध हो जाता है कि चाहे किसी के पास कितना भी अच्छा गुरु हो, व्यास जैसा गुरु हो, और उनसे साक्षात उन्होंने सभी शास्त्रगण सीख भी लिए हो, उन सब का कुछ मोल नहीं होता अगर उन शास्त्र के अध्ययन को अपने जीवन में ग्रहण न कर सके और जो अपने अंदर परिवर्तन आने चाहिए वो ना आए, तो इतना अधिक अध्ययन करने का क्या लाभ। ज्ञान केवल समाज को दिखलाने के लिए नहीं होता है, वो अपने जीवन में उतारने के लिए होता है। यद्यपि रोमहर्षण सूत अत्यंत विद्वान थे और उन्हें ब्राह्मण बनने का अवसर मिला था, फिर भी उनका स्वभाव सौम्य नहीं हुआ था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक संपत्तियों के अहंकार से फुला हुआ है वह ब्राह्मण के योग्य सौम्य आचरण प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति की विद्या उस बहुमूल्य मणि के समान है जो एक सांप के फन को सजाती है। फन पर बहुमूल्य मणि होने के बावजूद सांप सांप ही रहता है और एक साधारण सर्प की तरह ही भयानक होता है। यदि मनुष्य दीन और विनम्र नहीं बनता तो उसका वेद पुराणों का अध्ययन और शास्त्रों का विशाल ज्ञान केवल एक बाहरी दिखावा है, जैसे मंच पर नृत्य करने वाले किसी नाट्य कलाकार की वेशभूषा। फिर भगवान बलराम ने कहा, एतद अर्थो हि लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्या मे धर्म ध्वजिनस् ते हि पात किनोर दिखा, कि इस संसार में मेरे अवतार लेने का एकमात्र उद्देश्य ऐसे पाखंडियों का वध करना है जो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। ये धर्म ध्वजी है, धर्म का ध्वज लिए हुए हैं, परंतु धार्मिक नहीं है। वास्तव में वे सबसे बड़े पापी है। अर्थात मैं ऐसे पाखंडी लोगों को दंडित करने के लिए प्रकट हुआ हूं जो भीतर से अशुद्ध है किंतु बाहर से बहुत विद्वान और धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों का वध करना उचित है ताकि उन्हें भविष्य में पाप कर्म करने से रोका जा सके। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री बलराम अधार्मिक लोगों का विनाश नहीं करना चाहते थे, उन्हें मारना नहीं चाहते थे। इसी कारण वे
तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे, फिर भी एक अवतार के रूप में धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना उनका मुख्य कर्तव्य था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केवल कुश के एक तिनके से, जो घास का एक साधारण तिनका मात्र था, रोम हर्षण सूत का वध कर दिया। यदि कोई ये प्रश्न करे कि भगवान बलराम केवल कुश घास के तिनके से प्रहार करके रोमहर्षण सूत को कैसे मार सकते थे, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में प्रभु या स्वामी शब्द के प्रयोग से दिया गया है। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य या अलौकिक होती है, और क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, वे भौतिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हुए बिना अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार उनके लिए केवल कुश घास के तिनके से प्रहार करके रोमहर्षण सूत का वध करना संभव हुआ। हम इस पर कुछ विचार कर सकते हैं कि वहां नैमिषारण्य में कितने हजारों की संख्या में ऋषि मुनिगण एकत्र हुए थे और उन्होंने चुना था रोमहर्षण सूत को। वो बैठकर प्रवचन देने वाला था और उसे मार डाला। मानो कुछ आज धार्मिक उद्देश्य से कोई बैठक की गई हो, सब लोग एकत्र हुए हो और जो मुख्य प्रचारक हो उसको जाकर कोई सबके सामने घास का तिनका लेकर मार डालता है, कैसे लगेगा? हा हेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्न मानसः ऊचुः संकर्षणम् देवम् अधर्मस्ते कृतः प्रभो। सभी एकत्र ऋषिगण अत्यधिक व्यथित हो गए और उनमें हाहाकार हो गया। उन्होंने भगवान संकर्षण से कहा, हे स्वामी, आपने ये एक अधार्मिक कार्य किया है। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम अस्माभिर यदुनंदना आयुश्चात्मा क्लमम तावद यावत सत्रम समाप्यते। हे यदुनंदन, हमने उनको गुरु का आसन ब्रह्मासन दिया और उनको लंबी आयु होने का वचन दिया, और जब तक ये यज्ञ संपन्न रहे तब तक के लिए हमने उसे शारीरिक कष्ट से मुक्त रहने का वचन दिया था। इस परिस्थिति में क्योंकि आपने ये सब जाने बिना उनका वध कर दिया है, इसलिए हमारा विचार ये है कि आपका ये कार्य एक ब्राह्मण की हत्या के समान है। हे प्रभु, समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने वाले, हम पूर्ण रूप से जानते हैं कि आप सभी वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता है, आप समस्त योग शक्तियों के स्वामी है। इस फलस्वरूप सामान्य रूप से आप पर वैदिक विधान लागू नहीं हो सकते, किंतु फिर भी हम सविनय आपको यह सलाह देते हैं कि रोमहर्षण सूत की इस हत्या का प्रायश्चित करके अन्य लोगों पर अपनी अनन्य कृपा प्रदर्शित करें। हालांकि हम ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि आपको उसकी हत्या के प्रायश्चित हेतु किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। हम केवल ये सुझाव देते हैं कि आप प्रायश्चित की कोई ऐसी विधि अपनाएं ताकि दूसरे लोग आपके आचरण का अनुसरण कर सके। जो भी आचरण किसी महान व्यक्ति द्वारा किया जाता है, सामान्य मनुष्य उसी का अनुसरण करते हैं। तो भगवान श्री बलराम ने उत्तर दिया, हां, मुझे इस कार्य के लिए प्रायश्चित करना चाहिए जो शायद मेरे लिए उचित रहा हो परंतु दूसरों के लिए अनुचित है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए उपयुक्त प्रायश्चित को करना मेरा कर्तव्य है। साथ ही मैं इस रोमहर्षण सूत को लंबी आयु, पर्याप्त बल और इंद्रियों की पूर्ण शक्ति के साथ फिर से जीवन भी दे सकता हूं। केवल यही नहीं, बल्कि यदि आप चाहे तो आप जो भी अन्य वस्तु मांगेंगे मैं उसे प्रदान करके प्रसन्न होऊंगा। मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये सभी वरदान दे सकता हूं। तो भगवान बलराम का ये कथन निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि करती है कि सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और किसी भी तरह करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि उनके द्वारा रोमहर्षण सूत का वध
अनुचित माना जा सकता है, फिर भी वे सभी के लिए अधिक लाभ के साथ तुरंत इसका प्रतिकार या निवारण कर सकते हैं। इसलिए किसी को भी सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को केवल भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहां उपस्थित सभी महान विद्वान ऋषियों ने यह अनुभव किया कि यद्यपि वे भगवान बलराम के कार्य को अनुचित मानते थे, परंतु भगवान तुरंत अधिक लाभ के साथ उसकी भरपाई करने में सक्षम थे। भगवान द्वारा रोमहर्षण सूत के वध करने के उद्देश्य को कम नहीं करना चाहते हुए उन सभी ऋषियों ने बलराम जी से प्रार्थना की कि हे हमारे प्रिय प्रभु, रोमहर्षण सूत का वध करने के लिए आपके कुशा अस्त्र का ये असाधारण उपयोग वैसे ही बना रहे, क्योंकि आप उसे मारना चाहते थे, इसलिए उसे फिर से जीवित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रभु ये भी स्मरण रखे कि हम ऋषियों और ब्राह्मणों ने स्व इच्छा से उसे लंबी आयु दी थी, इसलिए ऐसा वरदान निष्फल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार सभा में उपस्थित सभी विद्वान ब्राह्मणों का अनुरोध स्पष्ट नहीं था, क्योंकि वे अपने उस वरदान को भी कायम रखना चाहते थे कि रोमहर्षण सूत इस महायज्ञ के अंत तक जीवित रहेगा, परंतु साथ ही वे बलराम द्वारा किए गए उसके वध को भी निष्फल नहीं करना चाहते थे। इसलिए सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी उच्च स्थिति के अनुरूप इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने कहा, क्योंकि पुत्र का जन्म पिता के शरीर से होता है, इसलिए वेद यह आदेश देते हैं कि पुत्र ही पिता का प्रतिनिधि होता है। अतः मैं कहता हूं कि रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रव सूत को अभी से अपने पिता का स्थान लेना चाहिए और पुराणों के प्रवचनों को जारी रखना चाहिए। और क्योंकि आप चाहते थे कि रोमहर्षण की आयु लंबी हो, इसलिए वो वरदान उनके पुत्र को हस्तांतरित कर दिया जाए, तो पुत्र उग्रशव को वे सभी सुविधाएं प्राप्त होगी जो आपने प्रदान की थी। एक अच्छे और स्वस्थ शरीर में लंबी आयु, बिना किसी बाधा के और सभी इंद्रियों की पूर्ण शक्ति। इसके बाद भगवान बलराम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि रोमहर्षण के पुत्र को दिए गए वरदान के अलावा वे उनसे कोई भी अन्य वरदान मांग ले और वे उसे तुरंत पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार भगवान ने स्वयं को एक साधारण क्षत्रिय की स्थिति में रखा और ऋषियों को सूचित किया कि वे नहीं जानते कि रोमहर्षण के वध का प्रायश्चित किस प्रकार किया जाए, परंतु वे जो कुछ भी सुझाव देंगे उसे वे हर्षपूर्वक स्वीकार कर लेंगे। तो सभी ब्राह्मण भगवान के उद्देश्य को समझ गए और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वे उनके लिए हितकारी तरीके से इसका प्रायश्चित करें। उन्होंने कहा, हे हमारे प्रिय प्रभु, बलवल नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर है। वो इलवल का पुत्र है और वो हर 14 दिन में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस पवित्र यज्ञ स्थल पर आता है और यज्ञ के हमारे कर्तव्यों के संपादन में बहुत बाधा डालता है। हम सभी आपसे इस असुर का वध करने का अनुरोध करते हैं। हमारा मानना है कि यदि आप कृपा कर उसका वध कर देते हैं तो हमारी ओर से यही आपका प्रायश्चित होगा। वो असुर कभी कभी यहां आता है और हमारे ऊपर मवाद, रक्त, मल, मूत्र और मदिरा जैसी दूषित अपवित्र चीजों की प्रचुर मात्रा में वर्षा करता है। वो हम पर ऐसी गंदगी बरसाकर इस पवित्र स्थल को प्रदूषित करता है। बलवल का वध करने के बाद अब 12 महीनों तक सभी पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा जारी रख सकते हैं और इस तरह आप सभी प्रकार के दोषों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा आदेश है।
भगवान बलराम ने असुर बलवल का सामना करने की तैयारी की। जिस समय वो असुर आमतौर पर उस पवित्र स्थान पर हमला करता था, उस समय एक बड़ा ओलावृष्टि का तूफान हुआ, यानी हेलस्टोन। पूरा आकाश धूल से ढक गया और वातावरण में एक दुर्गंध छा गई। ठीक इसके बाद उस दुष्ट असुर बलवल ने यज्ञ स्थल पर मलमूत्र और अन्य अपवित्र पदार्थों की मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इस हमले के बाद वो असुर स्वयं हाथ में एक बड़ा त्रिशूल लिए प्रकट हुआ। उसका कद विशाल था और उसका काला शरीर कोयले के एक विशाल ढेर जैसा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछे तांबे की तरह लाल दिखाई दे रही थी और अपनी बड़ी दाढ़ी और मूछे के कारण उसका मुख अत्यंत भयानक और उग्र लग रहा था। जैसे ही भगवान बलराम ने उस असुर को देखा, वे उस पर विशाल ढेर जैसा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछे तांबे की तरह लाल दिखाई दे रही थी और अपनी बड़ी दाढ़ी और मूछे के कारण उसका मुख अत्यंत भयानक और उग्र लग रहा था। जैसे ही भगवान बलराम ने उस असुर को देखा, वे उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए।

और पहला अवसर मिलते ही भगवान बलराम ने उसे अपने हल से नीचे खींच लिया और क्रोध पूर्वक अपने मूसल से उस असुर का सिर फोड़ दिया। बलराम के प्रहार से उस असुर का माथा फट गया, जिससे प्रचुर मात्रा में रक्त बहने लगा। ऊंचे स्वर में चीखते हुए वो असुर, जो धर्मात्मा ब्राह्मणों के लिए इतना बड़ा उपद्रव बना हुआ था, भूमि पर गिर पड़ा। उसका गिरना वैसा ही था जैसे गेरू या लाल ऑक्साइड की चोटी वाले किसी विशाल पर्वत पर वज्र गिरने से वह टूटकर भूमि पर गिर जाता है। नैमिषारण्य के निवासी विद्वान ऋषि और सभी ब्राह्मण यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान बलराम को अपनी सादर प्रार्थनाएं अर्पित की। उन्होंने भगवान को अपने हृदय से आशीर्वाद दिया और सभी इस बात पर सहमत हुए कि कुछ भी करने का भगवान बलराम का कोई भी प्रयास कभी विफल नहीं हो सकता। इसके बाद ऋषियों और ब्राह्मणों ने भगवान बलराम का औपचारिक अभिषेक या स्नान कराया, ठीक वैसे ही जैसे देवता असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा इंद्र का अभिषेक करते हैं। ब्राह्मणों और ऋषियों ने भगवान बलराम को उत्तम श्रेणी के नए वस्त्र, आभूषण और विजय की कमल माला भेंट करके सम्मानित किया। ये माला समस्त सौंदर्य का भंडार थी और शाश्वत थी, ये कभी सूखने वाली नहीं थी। इस घटना के बाद श्री बलराम ने नैमिषारण्य में एकत्र ब्राह्मणों से अनुमति ली और अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां से प्रस्थान कर दिए। आज श्री बलराम की कथा में हम यहीं पर विराम देते हैं और इसके आगे की कथा हम अगले सप्ते प्रस्तुत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे किसी भी श्रोतागणों को कोई भी प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को या टिप्पणी को आप हमारे पास ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedavani@gmail.com। हमारा साथ देने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब आप सभी की सेवा में कुछ भजन कीर्तन।

जीवन जन्म बिना कारण से ही गवा दिया, कुछ लाभ नहीं हुआ, क्या होगा मेरा।

भी रति नहीं हुई उस प्रेम धन में, जो हरिनाम संकीर्तन है, ये प्रेम प्रेम का खजाना है, ये गोलोक की संपत्ति है, भगवान के वृंदावन धाम गोलोक की संपत्ति है, इसमें रति नहीं हुई और संसार में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: हेलो जी, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त आरजे चांदनी जैन के साथ चांदनी के सफर प्रोग्राम में। सो दोस्तों, सबसे पहले तो भाई आपसे एक ही सवाल करूंगी। सबसे पहले सुबह सुबह उठकर आपने क्या देखा? ये तो ऑब्वियसली वाली बात है, आजकल हम सभी सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम तो बहुत कम लोग लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं, है ना। तो चलिए यही बता दीजिए, आज मोबाइल देखकर क्या देखा कि बैटरी कितनी है या फिर किसके क्या मैसेजेस आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीजें तो चलती रहेगी, लेकिन दोस्तों परसेंटेज जितनी भी हो अपना ये यानी कि रेडियो ब्रिस्बेन में प्रोग्राम हमेशा चार्ज ही रहेगा। सो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ब्रिस्बेन में प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप जहां भी है ना, घर पर, गाड़ी पर, ऑफिस पर या फिर स्कूल, आज की सुबह हम थोड़ी म्यूजिक वाली, थोड़ी न्यूज वाली और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स वाली बनाने वाले हैं। सो दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ब्रिस्बेन में हमेशा हम हैप्पी रहते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव रहते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की बहुत ही प्यारे गीत के साथ, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी, आप सभी सुन रहे हैं। तो आइए फिर अब थोड़ा सा अपनी सिटी को हम चेक कर लेते हैं, आखिर हमारे ब्रिस्बेन में क्या चल रहा है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट ब्रिस्बेन डेवलपमेंट की बात करेंगे। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने मेट्रो एक्सपेंशन के अर्ली वर्क्स के लिए $38 मिलियन एलोकेट किए हैं। प्रपोज्ड फ्यूचर रूट्स में एयरपोर्ट, कैरिसल डाइन, कैपलेबा और स्प्रिंगवुड जैसे एरियाज इंक्लूड है। फुल एक्सपेंशन जो है वो 2032 से पहले कंप्लीट होना अनलाइकली बताया जा रहा है, लेकिन प्लानिंग और अर्ली वर्क आगे बढ़ रहा है। मतलब दोस्तों, फ्यूचर ब्रिस्बेन और कनेक्टेड होने वाला है। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट की बात निकली ही है, तो कम्यूटर्स के लिए एक और अपडेट है भाई। ब्रिस्बेन फेरी सर्विसेज में इंडस्ट्रियल एक्शन की वजह से डिसरप्शन जो है वो हुआ है, और क्वींसलैंड रेल ने पीक टाइम्स में 80 एडिशनल ट्रिप्स पर वीक ऐड करने का प्लान अनाउंस किया है। सो अगर भाई आप डेली कम्यूट करते हैं, प्लान बी रेडी रखिए और ट्रेवल से पहले लेटेस्ट सर्विस अपडेट चेक करना भूलना मत। जी हाँ, आइए इसी के साथ मैं नहीं भूलूंगी आपको प्यारे प्यारे से गीत सुनाना ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो अभी आप सभी ने सुनी है ये खबर। उसके बाद यानी कि अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी हटकर, क्योंकि न्यूज तो हम सुनते रहेंगे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी लाइफ को कहते हैं ना कि सही राह दिखाने में हेल्प करती है, वो बात करनी भी काफी जरूरी है। एक छोटी सी बात आपके साथ करनी चाहूंगी। हम अक्सर दोस्तों सोचते हैं, आप सोचते हैं, मैं सोचती हूँ, पूरी दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ जरूर सोचता है, लेकिन उन कुछ ना कुछ बात में से ये बात अक्सर सोचते हैं, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं हैप्पी रहूंगा। ऐसा ही होता है ना, आप भी ये सोचते हैं ना कि अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना तब मैं खुश रहूंगा, तब मैं अपनी सारी खुशियों को पूरा करने की कोशिश करूंगा, अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा। ऐसा ही होता है ना, अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं हैप्पी रहूंगा, लेकिन ट्रुथ ये होता है परफेक्ट डे का वेट करते करते हम ब्यूटीफुल ऑर्डिनरी डेज जो है ना वो मिस जरूर कर देते हैं। आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना जरूरी नहीं है दोस्तों, बस किसी को ना जेन्युइनली स्माइल कर दीजिए, किसी अपने को मैसेज कर दीजिए, अपनी फेवरेट चाय एंजॉय कर लीजिए, या अपनी फेवरेट कुछ भी चीज आपको अच्छी लगती है, खाना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है, किसी से बात करना अच्छा लगता है, किसी के साथ दोस्ती रखना अच्छा लगता है, वो कीजिए। और खुद से एक बार जरूर बोलिए कि आई एम डूइंग बेटर देन आई थिंक। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों समटाइम्स क्या होता है कि अ गुड मॉर्निंग इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस आउटसाइड, इट इज अबाउट व्हाट हैपेंस इनसाइड यू। जी हाँ, सो ब्रिस्बेन टेक अ ब्रीद, स्माइल और बोलो आज का दिन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसीलिए दोस्तों जो करना है ना आज कर लीजिए, कल का कोई भरोसा नहीं होता है। हाँ, कल की टेंशन भी करनी चाहिए, लेकिन कल की टेंशन की वजह से आज अपना खराब नहीं करना चाहिए और ना ही इस चीज का वेट करना चाहिए कि जब कभी अच्छे दिन आएंगे तो मैं खुश रहूंगा। जी नहीं, हमारा पूरा हक है हर दिन हैप्पी रहने का, लेकिन मेरे लिए ना आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप सभी स्माइल करते रहें, पॉजिटिव रहें और हमेशा खुश रहें। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो चलिए अब हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगस्त में इम्प्रूव हुआ है। वेस्ट पैक मेलबर्न इंस्टीट्यूट सर्वे के अकॉर्डिंग सेंटीमेंट इंडेक्स 6% राइज करके 88.9 पर पहुंच गया है और ये इम्प्रूवमेंट जो है वो रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट को 4.35% पर होल्ड करने के बाद देखी गई। सिंपल वर्ड्स में अगर बात कहूं तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियंस के मूड में थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है वो वापस आती दिख रही है और ट्रैवल लवर्स के लिए भी वही एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। क्वांटास ने 2026 का अपना बिगेस्ट डोमेस्टिक सेल अनाउंस किया है जिसमें कि सिलेक्टेड इकोनॉमी फेयर्स $99 से स्टार्ट हो रहा है। सेल जो है अगस्त 18 से अगस्त 25 तक चलने वाली है। ये जो सीट्स है वो सोल्ड आउट होने तक इतने टाइम तक ही रहने वाली है। ये न्यूज जो है मैंने आपको कल भी बताई थी। तो अगर आप भाई क्रिसमस हॉलीडेज या फिर फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अभी प्राइजेस चेक करना वर्थ हो सकता है। तो आइए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। सो नाउ टाइम फॉर अ क्विक स्पोर्ट्स ब्रेक। ब्रिस्बेन लायंस के कैंप में प्रिपरेशंस कंटिन्यू है और टीम के अपकमिंग AFL एक्शन को लेकर सिलेक्शन जो है वो डिस्कशंस भी इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। ब्रिस्बेन प्रीमियरशिप यूटिलिटी टाई गैलोप सस्पेंशन सर्व करने के बाद सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, जिससे कि कोच क्रिस फेगन के सामने सिलेक्शन हेडेक क्रिएट हो गया है। और ब्रिस्बेन लायंस की ट्रेनिंग भी आज जो है वो ब्रिक्टन होम्स एरेना में हुई है। तो लायन फैंस सीजन के इम्पोर्टेंट फेज में अब हर सिलेक्शन जो है वो डिसीजन मैटर करेगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर। सो दोस्तों, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। अगर आप लाइव म्यूजिक के फैन हैं भाई, तो एक नाम नोट कर लीजिए, वो है गैरी ऑक। जी हाँ, गैरी ऑक जो है वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर आ रहे हैं अक्टूबर में, और ब्रिस्बेन भी उनके 5 डेट ऑस्ट्रेलियन टूर के पार्ट है। टूर जो है वो अक्टूबर में एडिलाइड से स्टार्ट होगा और ब्रिस्बेन के साथ सिडनी और पर्थ भी इंक्लूड है। और ब्रिस्बेन एंटरटेनमेंट सेंटर के लिए भी एक स्पेशल माइलस्टोन रहा है भाई। अब वेन्यू ने अपना 40 ईयर्स सेलिब्रेट किया है, और इन 4 डिकेड्स में मिलियंस ऑफ पीपल ने वहां पर कॉन्सर्ट और शोज जो है वो इंजॉय किए हैं। इमेजिन कीजिए, 40 ईयर्स ऑफ म्यूजिक, लाइट्स, क्राउड्स एंड मेमोरीज। ब्रिस्बेन में एंटरटेनमेंट का सीन कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

दोस्तों एक बात बोलूं, यू डोंट हैव टू हैव द होल डे फिगर्ड आउट, यू जस्ट हैव टू मेक द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स काउंट। इसीलिए दोस्तों आज पूरी लाइफ का प्रेशर मत लीजिए, बस नेक्स्ट स्टेप देखिए ना, वन स्टेप वन स्माइल वन गुड डिसीजन, और फिर क्या, धीरे धीरे देखना पूरा दिन बेटर हो जाएगा। ट्राई इट। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी मिसो। दोस्तों, अगर मैं आज जो आपसे ना कुछ चीज शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ही हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ, इसे जरूर सुनिए और जरूर इसे कंपेयर कीजिएगा अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि हम भी कहीं ना ऐसा कर ही देते हैं। एक लड़की रोज सोचती थी दोस्तों कि मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा। जैसे कि हम सोचते हैं कि आज का दिन कितना बोरिंग हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ एक्साइटिंग हमारे साथ नहीं हो रहा, या हम कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं कर रहे, राइट? सो वो लड़की भी ऐसा ही रोज सोचती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो रोज ना सिर्फ एक छोटी चीज जो है वो नोटिस करेगी जो कि अच्छी होगी। जो बुरी वाली चीज है ना उसे इग्नोर कर देगी, लेकिन जो अच्छी चीज होगी सिर्फ उसी को ही वो नोटिस करेगी। पहले दिन उसने सनराइज को नोट किया, सेकंड डे उसने चाय की स्मेल, चाय की खुशबू को महसूस किया, तीसरे दिन एक स्ट्रेंजर की स्माइल को उसने नोट किया, चौथे दिन अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस किया। कुछ वीक्स बाद उसने रियलाइज किया लाइफ बोरिंग नहीं थी, उसका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पर था। सो दोस्तों, शायद हमारे साथ भी कभी कभी यही होता है ना? प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है, बस उनके बीच की ब्यूटीफुल चीजें भी नोटिस करनी है जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। जो कहते हैं ना इग्नोर करने वाली चीज होती है, उसे हम बहुत ज्यादा हाईलाइट अपनी लाइफ में कर लेते हैं, उसी में हम फोकस कर लेते हैं, लेकिन उन टाइम पर, उन समय पर जो अच्छी चीज बीती होती है उसे हम बिल्कुल ही टोटली इग्नोर कर देते हैं। सो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जैसे इस लड़की ने पूरे दिन में अच्छी चीजों को नोट किया है, ऐसे आप भी करके देखिए, फिर जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई है ना वो तो बिल्कुल ही छोटी नजर आएगी और हमें खुद पर प्राउड होगा कि नहीं, हमने खुद का दिन ही बोरिंग खुद की सोच से बना रखा था। अगर हम अच्छी चीजें ढूंढ लेते तो हर चीज एक्साइटिंग जरूर होती। तो दोस्तों, ये प्यारी सी स्टोरी जो लेकर आई हूँ, ये हमारी लाइफ में बहुत डिपेंड करता है। अगर हम इसी चीज को फॉलो भी करते हैं, समझते हैं, तो लाइफ ब्यूटीफुल होती ही जाएगी, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है आती जाती रहेगी। दोस्तों, प्रॉब्लम्स का आना भी बहुत जरूरी है, तभी हमें सॉल्व करने का, कहते हैं ना, मौका भी मिलता है और उन प्रॉब्लम से हम लेसन्स भी सीखते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम जाने का सफर, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

करने से साक्षी आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इस हफ्ते शुरू होने जा रहा मेटा पर मुकदमा, अगर मिली हार तो हमेशा के लिए बदल जाएगा इंस्टा और FB। अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर मेटा पर हजारों मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में इस हफ्ते शुरू होने वाला मुकदमा सबसे अहम हो सकता है। कई राज्य भारी भरकम हर्जाने की मांग कर रहे हैं, जो कुल मिलाकर $1.4 trillion तक हो सकता है। साथ ही वो कंपनी के फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने के तरीकों में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस मुकदमे में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि उसने जानबूझकर ऐसे फीचर बनाए जिनसे बच्चे उसके प्लेटफॉर्म के आदी हो जाते हैं और इस तरह वो युवाओं की मानसिक सेहत से जुड़े संकट को बढ़ावा दे रही है। ट्रंप के 57 अधिकारियों की संपत्ति $10 करोड़ से अधिक, अमीरों को नियुक्त करने में 3 राष्ट्रपतियों से निकले आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन में अत्यधिक अमीर लोगों को शामिल करने के मामले में इतिहास रच दिया है। उपभोक्ता वकालत समूह पब्लिक सिटीजन की जारी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए 950 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले अधिकारियों की संख्या पिछले 3 राष्ट्रपतियों के कुल आंकड़ों से भी 4 गुना ज्यादा है। ग्रीस आइलैंड पर हनीमून मनाने गए ब्रिटिश कपल की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत, पायलट की भी गई जान। ग्रीस के सिफनोस द्वीप में भीषण हादसा हुआ है, रिपीट, यहां एक ब्रिटिश कपल का प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें उनके पायलट और कपल की मौत हो गई। हादसा हेलीपोर्ट पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले हुआ। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। 30,000 की भीड़, बैरिकेडिंग तोड़कर हिंसा, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया क्यों करना पड़ा लाठीचार्ज। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के इस्तेमाल ने काफी तूल पकड़ लिया था। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष साफ किया है। पुलिस ने हलफनामे में स्पष्ट किया कि उनके निशाने पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्र कभी नहीं थे। इसके बजाय इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ उन असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए किया गया था जिनका पुराना और गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। दिल्ली पुलिस की SIT ने कहा कि उनकी जांच सिर्फ उन 2,873 संदिग्धों तक सीमित रहेगी जो पहले भी संगीन जुर्म कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उन आम छात्रों या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। हाफिज सईद पर कसेगा शिकंजा, 26/11 आतंकी हमले में BNSS कानून के तहत चलेगा केस। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के आरोपी 6 पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन आरोपियों में लश्कर-ए-तैयबा का हैंडलर हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी भी शामिल हैं। ये ट्रायल इन आतंकियों की गैर मौजूदगी में होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये पहला मामला होगा जब आतंकियों की गैर मौजूदगी में उन पर ट्रायल चलाया जाएगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें, अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी और सदाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एक बहुत ही प्यारा गीत से हमने शुरू किया आज का प्रोग्राम अमिता, थैंक यू। और अगला जो गीत मैं बजाने जा रहा हूँ I'm laughing because I hope you don't cringe. गाना का टाइटल है दिल से रे, राइट? आपको याद होगा 1998 की फिल्म दिल से का पावरफुल टाइटल सॉन्ग है इसका, जो म्यूजिक अय्यर रहमान ने दिया। अय्यर रहमान एक ऐसा व्यक्ति है जो बात करना नहीं जानता है और ही नेवर मेक्स फ्रेंड्स और never gets close to anybody, nobody gets close to him.
1: So he's a loner?
0: No, he's a loner. It's not that he...
1: He's not Piscean, is he?
0: I have to find
1: you
0: out.
1: You have to Google that, please.
0: Am I that way too? Because he's very shy, introvert, but
1: shy person.
0: It's not that... he's one of the most humble person you can come across. That's why he even didn't go on the stage very much, because he was very shy.
1: So he just stayed in the background.
0: Over the years, he's known to... कोई भी सिंगर से आप पूछेंगे, चाहे आप क्या सोनू से पूछे या आप शंकर, क्या उसका नाम,
1: शंकर महादेव,
0: शंकर महादेव, इनसे भी पूछे। शंकर महादेव इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू नो दैट, राइट?
1: ओह रियली,
0: वेरी क्वालिफाइड, या
1: वाओ।
0: बट उसका घराना है म्यूजिक,
1: या व्हाट अ ब्यूटीफुल,
0: या एंड इवन ही एंडोर्स्ड द सेम थिंग। ही सेड ही इज सच अ there won't be another music person like him. He said, you give, you know that dil se re dil se, that there's a part a lady talks there,
1: okay,
0: you know, just
1: all right,
0: you'll probably hear it in
1: okay.
0: this you know who that is? Kavita Krishnamurti.
1: Oh,
0: and now what he has done to make that effect on that song in that movie, he has played with her voice.
1: Oh,
0: And that's what he's good at.
1: Right, yeah.
0: And he can arrange the music. He can make variations in the music with the taal and everything. And that's why this music's come out so good. So, but he's very, very dedicated with his work. I think 24/7 is thinking about the music, how he's going to make this. He doesn't do only one project at a time, right? There is...
1: many, multiple.
0: Telugu and all those he does too.
1: Oh,
0: right?
1: Okay.
0: Yeah, so he's a very, very busy man. So, chale dosto, A.R. Rahman ne compose kiya aur mukhya awaz bhi unhi ki hai isme. Khoobsurat lyrics, Gulzar. Or, now, apart Gulzar. Gulzar was a son of a mechanic. You see how much I know about this thing because I've got time to do this. Nice. Gulzar... का जो रियल नाम है, इट स्लिप्स माय माइंड, सो ही बिकॉज ही डिडंट वांट हिज फादर टू नो दैट ही वाज राइटिंग फॉर फिल्म इन दोस डेज, नॉट, यू नो,
1: आई एम श्योर हिज फादर एक्सपेक्टेड हिम टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स,
0: या राइट, या व्हेन आई वाज रीडिंग दिस आई वाज थिंकिंग ऑफ यू, बिकॉज़ योर फादर वाज अ मैकेनिक,
1: यस,
0: सो यू आर वेरी मैकेनिकली इनक्लाइंड, राइट?
1: यप।
0: सो हिज फादर वांटेड हिम टू do something else, never even thought about writing.
1: Oh.
0: But to write, he changed his name so his father won't know that he was writing.
1: Wow.
0: Okay.
1: Yep.
0: Now, that I got from Nivea last night.
1: Oh.
0: Okay, Nivea talked about it.
1: Oh.
0: Credit, you have to give where it's due.
1: Yes, of course, where it's due.
0: Yeah. Yep. Film mein Shah Rukh Khan aur Manisha Koirala hai.
1: Huh.
0: दिल से रे के जो सीधा मतलब है दोस्तों, दिल की गहराइयों से, ये हल्का फुल्का रोमांटिक गाना नहीं बल्कि एक ऐसे इंटेंस मोहब्बत की पुकार है जिसमें प्यार, दर्द और जुनून तीनों साथ चलते हैं, ठीक है? सो चलिए, एक बहुत प्यारा सा गीत है और जब अय्यर रहमान कुछ भी छूता है तो वो भाई सीधा गोल्ड हो जाता है, यू नो दैट ना? चलिए सुनते हैं।

0: हाँ दोस्तों, दिल से भी आपने सुना और हमने अपने दिल से आपके दिल तक पहुंचाया था ये गीत को।
1: दिल से दिल तक,
0: उम्मीद है आपको लगा
1: है? दिल से दिल तक।
0: दिल से दिल तक, या ओके। नंबर है 04300031701, या आप चाहे स्टूडियो नंबर है 3279-1701। यू कैन कॉल अस अगर कुछ सुनना चाहे या कुछ डिस्कशन करना चाहे तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
1: होप यू हैव अ पेन।
0: ओहो, या या या या या।
2: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो?

0: देखिए दोस्तों, कुछ पॉजिटिव न्यूज की ओर चलते हैं। नेपाल में टाइगर्स की शानदार वापसी।
1: हाँ,
0: तो अभी भी क्योंकि कहीं पर टाइगर्स लोग जिंदा है। ओके, वाइल्ड टाइगर्स की संख्या 2010 के 121 से बढ़कर अब 429 हो गई है। ये कम्युनिटी और कंजर्वेशन की मेहनत का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो पीपल हैव वर्क टुगेदर टू गेट द पॉपुलेशन हाई। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
1: मजदूरों ने, टॉकिंग अबाउट द टाइगर्स पॉपुलेशन, राइट?
0: या, ओके। मजदूरों ने सच में सोना खोज लिए। ठीक है, बेल्जियम में जैक हेमा चलाते के समय वेकर्स को जमीन के नीचे 40 गोल्ड बार्स और 4,000 से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मिले। कीमत लगभग $10 मिलियन। That's not too much. अब पुलिस असली मालिक का पता लगा रहा है। ओके, और भी न्यूज और लेकर आएंगे। छोड़ो, ये गाना मैं बजा दूं, which I like and I'm sure you like it too, Amita, and I think our listeners will probably like it too. Okay?
1: Yep.
0: तो बजेगा तो, I don't know, क्यों नहीं बजना चाहता है।
1: Oh, I like the song.

0: और दोस्तों, आपने कई बार सुने होंगे कि अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से मत कीजिए, है कि नहीं? हर इंसान का सफर वक्त और मंजिल अलग होती है, है? बस कल से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, एवरी डे कल से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? सो यू आर स्पेशल, एवरीवन स्पेशल इन देयर ओन वे, इज़न्ट इट?
1: यस, फॉर श्योर।
0: चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: ओले ओले एक गाना, चलो थोड़ा अच्छा ठीक था, वेरी नाइस सॉन्ग और ब्यूटीफुल सिंगर दो, यू नो. ऑलराइट, व्हाट एल्स.
1: 7:55, टाइम इज मार्चिंग ऑन.
0: आर वी गोइंग टू प्ले ओल्ड सॉन्ग्स बिट लेटर, लिटिल बिट ओल्डर वंस.
1: वी प्ले, यू जस्ट प्लेड वन ओल्ड सॉन्ग नाउ.
0: ओए,
1: आई प्ले वन नाउ.
0: ओके,
1: हियर वी गो. Why is it not working? Doesn't want to go for the wind.

0: ओके चलिए एक रिक्वेस्ट आया है एंड रिक्वेस्ट करने वाले हैं
1: पंडित जी. ओके पंडित जी आनंद की फरमाइश जी.
0: ओके फिल्म सागर का गाना है दोस्तों.

0: ओके ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, क्या बात है, बहुत सुंदर गाना भी आपने सुना।
1: आप

0: ओके ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, क्या बात है, बहुत सुंदर गाना भी आपने सुना।
1: आप

0: आशा भोसले से भी। रफी साहब के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है दोस्तों, तो मैं बता दूं क्या हुआ था रफी साहब का। इन 1937 उस समय KL साइगल बहुत ज्यादा नामी कलाकार थे, अभी तक भी है। ड्यूरिंग अ KL साइगल जो कॉन्सर्ट इन लाहौर में, वहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी फेल होने के कारण वो शो नहीं हो रहा था। और यू नो इन दोज डेज पीपल गॉट दिस एंड दैट, या सो आई थिंक हिज मामा रफी साहब, ही वाज ओनली 13 इयर्स ओल्ड, राइट
1: राइट,
0: एंड सेड लुक आई गॉट समवन टू फिल इन। So the MC said it's better than anything else, well bring him on, right?
1: Oh my goodness.
0: And Rafi went on and without a mic to calm the restless audience.
1: You mean,
0: right?
1: He wasn't even nervous?
0: No, he just went. And when you speak to Rabi, I told you I have had a
1: you've spoken to him.
0: I spoke with him, I had a 15-20 minutes with him.
1: Yeah.
0: And he's a most, you can't hear him, he whispers when he talks, okay?
1: Oh.
0: Right?
1: Yep.
0: But when he sings, imagine he went there and sang without the mic. And do you people want to know what he really sang?
1: Yep.
0: That particular was recorded.
1: Oh.
0: Okay?
1: Here we go.

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर सताक्षी है एक बार फिर से आपके साथ, कुछ खास किस्से, कुछ खास कहानियां और हमारी सुबह का एक और खास आगाज। जी, आज भी सूरज निकला है और आज भी पंछी गुनगुना रहे हैं, लेकिन ये एहसास इसलिए खास है क्योंकि हमारी जिंदगी में ये जो दिन आया है ये आज से पहले कभी नहीं आया। आया नहीं आया। आज का ये दिन हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि आज की ये तारीख इसके पहले कभी हमारी जिंदगी में नहीं आई और ना ही कभी जिंदगी में आएगी, है ना। तो चलिए फिर आज के इस दिन को, इस खास दिन को हम और भी खास बनाते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और आगे बढ़ते हैं इस एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस मैं आपके साथ हमेशा की तरह आज भी हो रही हैं मेरी कुछ खास और बेहतरीन बातें। वैसे इट हैपेंस का साथ जो है वो है ही बड़ा प्यारा है ना, लेकिन इस साथ की खूबसूरती को और खास बनाएंगे अभी उन लोगों के साथ जिनके लिए आज का दिन खास है। तो भाई जिनका आज जन्मदिन है हमारी तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं, और आपके साथ साथ ये दिन हमारे लिए भी बहुत खास हो गया क्योंकि आपकी खुशियां हमारे लिए भी उतनी ही खास है। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी उन सबको शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। एक दूसरे के साथ जिंदगी के इस खास साथ को खास बनाते रहिए, जीते रहिए और एंजॉय करते रहिए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके नाम प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक, इसे सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.0।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: तो वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर। और इट हैपेंस के इस खास बेहतरीन और जबरदस्त सफर में, मॉर्निंग वाले हमारे खास सफर में, मैं सताक्षी आपके साथ हूँ। देखिए, एक बहुत ही बट ऑब्वियसली बात है जिस पर गौर करना या जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है कि हम एक रिश्ते में जब बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एक इंसान पर पूरी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं, पूरी तरह से हम उसके हो जाते हैं, तो अक्सर उस रिश्ते में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि जिस रिश्ते में आप मौजूद नहीं हैं अपने लिए, आप खुद पर ध्यान नहीं दे रहे, आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उस रिश्ते में आपकी वैल्यू कम होना, क्योंकि लोगों की ये आदत है कि जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते तो वो भी आप पर कम ध्यान देते हैं, है ना। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को अगर आप किसी एक इंसान पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे दे रहे हैं, तो याद रखिए कि आपकी कद्र उस रिश्ते में नहीं की जाएगी। तब की जाएगी जब आपकी आपके लिए वैल्यूज़ बनी रहें, आप उस रिश्ते में शामिल रहें। आइए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: इट हैपेंस। जी हाँ, इस शो को इस वक्त आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। यार, जब आप लाइफ में मूव ऑन करते हैं, जब आप लाइफ में ग्रो करते हैं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग जो आप पर ध्यान नहीं देते थे, आप पर फोकस नहीं करते थे, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आप देखते हैं कि वो सडनली फिर से आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं, फिर से आपकी वैल्यू कर रहे हैं, है ना। और जब तक आप उस रिश्ते में खुद को झोंक के रखते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी हम कह रहे थे, तो आपको इग्नोर किया जाता है, आपको अवॉइड किया जाता है। लेकिन जब एक इंसान को ये नज़र आता है कि अब आपके उसके पास लौटने के रास्ते बंद हो गए हैं, अब आपने अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू किया, आपने अपने लिए काम करना शुरू किया है, तो सडनली जब उसे ये रियलाइज होता है कि आपकी एनर्जीज उसकी तरफ से बिल्कुल वापस आ गई, एकदम से खींच गई हैं, तो फिर वो परेशान होता है। वो ग्रोथ आपकी उसको नजर आती है, और फिर आपके लिए रिस्पेक्ट जो है वो उस इंसान की निगाह में बढ़नी शुरू होती है, आपकी इंपॉर्टेंस उस इंसान की निगाह में बढ़नी शुरू होती है, है ना। तो इसीलिए थोड़ी देर पहले जैसा कि मैं कह रही थी, खुद पर फोकस कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि यही एक रास्ता है किसी और के दिल में भी बने रहने का। आइए फिलहाल आपको आगे लेकर चलती हूँ एक और ट्रैक के साथ, इसे सुनिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर, आपके साथ सताक्षी है। और इट हैपेंस में अभी हमें गानों की हैट्रिक में, जी हाँ, आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से मेरे साथ हैं। तो चलिए आज के गानों की हैट्रिक का ये पहला ट्रैक सुनिए मेरे साथ।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
9: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।

रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर आप हैं सताक्षी के साथ और इस वक्त मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ताजा तरीन शो इट हैपेंस। एक बार फिर से आपको जी हाँ प्यार भरी और ताजा तरीन गुड मॉर्निंग। कि ऐसा है कि तुम अच्छे हो और जमाना तुम्हें बुरा कह रहा है तो ये अच्छा है, जी हाँ ये अच्छा है, बजाय इसके कि तुम बुरे हो और जमाना तुम्हें अच्छा कहे, क्योंकि आखिर में हिसाब किताब तो भगवान को ही देना है ना। इसलिए जमाना अच्छा आपको कहे इसके लिए उससे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप जमाने के हिसाब से वो सारे काम करते रहें जो आपको अच्छाई का सर्टिफिकेट देते हैं, आपको दुनिया की नजर में अच्छा बनाते हैं। जमाना भला ही आपको बुरा कह ले, लेकिन आपको अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने हैं। सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस और चलिए इसी बात पर एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसारणी 1701 AM।

सुबह का ताजा तरीन और एनर्जी से भरा जिंदगी और आपकी अपनी एनर्जी से भरा शो इट हैपेंस आप एंजॉय कर रहे हैं। आपके साथ है सताक्षी। जी हाँ, ये सफर जो है ये एक बार फिर से आपकी बातों का सफर है, जिंदगी के खास और नए इरादों का सफर है। ये सफर है आपको आपसे मिलवाने का, तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सुबह